मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की नवमी तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार दिए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में

0: भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में मूंग की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मूंग की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट में मिट्टी उत्तम होती है। खेत में अतिरिक्त पानी नहीं लगना चाहिए और यदि लग जाए तो उसे तुरंत निकालना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो जुताई देसी हल से कर लेते हैं। अब जहाँ तक बात है बीज एवं बुआई की, तो मूंग की अच्छी उपज लेने के लिए इसकी उन्नतशील प्रजातियों को बोना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं उनमें प्रमुख हैं पंत मूंग 2, नरेंद्र मूंग 1, PDM 11, PDM 54, मालवी जनप्रिया और मालवी जागृति। पंत मूंग 2 की पैदावार 6 से 11 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। नरेंद्र मूंग 1 की जो पैदावार है वो 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और मालवी जनप्रिया एवं मालवी जागृति की पैदावार 12 से 15 कुंटल है। तो इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाए लेकर के बुआई करें। इन प्रजातियों की बुआई तैयार खेत में ही करनी चाहिए और खेत को तैयार करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। मूंग की खेती के लिए एक हेक्टेयर में 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय कुंडों में दे देना चाहिए, छींट कर नहीं। अगर उर्वरकों को छिटक देते हैं तो इन उर्वरकों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। बुआई के दो तरीके हैं, एक तो छिटकवा और दूसरा हल के पीछे कुंडों में। छिटकवा तरीका सही नहीं होता है, बुआई कुंडों में ही करनी चाहिए। एक कुंड से दूसरे कुंड की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर रखते हैं। कुंड में बुआई करने से एक साथ दो काम हो जाते हैं, एक तो उर्वरकों का सही ढंग से प्रयोग होता है तथा दूसरे बीज की सही ढंग से बुआई हो जाती है। एक हेक्टेयर मूंग की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को शोधित अवश्य करना चाहिए। बीज को दो बार शोधित किया जाता है, एक बार थीरम दवा से और फिर विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से। थीरम एक कवकनाशी रसायन है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए

0: पर्याप्त होती है। बीज का जमाव अच्छी तरह हो इसके लिए आवश्यक है कि राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित किया जाए। यदि 10 किलोग्राम बीज है तो एक पैकेट जो कि 250 ग्राम का होता है इसकी आवश्यकता होती है। इससे उपचारित करने के लिए पहले आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसमें 50 ग्राम गुड़ को घोल लेते हैं, फिर राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट इसमें मिला देते हैं, फिर इसे 10 किलोग्राम बीज पर फैलाकर हल्के हाथों से मिलाते हैं, फिर 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। तेज धूप में बुआई करने पर कल्चर के जीवाणु मर सकते हैं। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अगर रसायनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्लूक्लोरालिन दवा प्रयोग करते हैं। फ्लूक्लोरालिन 45 ईसी की 2 लीटर मात्रा को आवश्यक पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले खेत में छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक निकाई गुड़ाई भी कर देना चाहिए, इससे खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर मूंग की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मूंग की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। 6:10 होने वाले हैं, निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है।

तन के साथ साथ मन की शुद्धि हो तो पवित्र मन में ईश्वर का वास होता है। इस ईश्वर की जय जयकार से ही प्राणियों के मन में लेश मात्र भी भय नहीं रहता।

आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। आज इसमें जिन गायक कलाकारों ने अपने स्वर दिए वो थे अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल और रूप कुमार राठौर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए सुने साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन एवं प्रस्तुति है अरुण पांडेय की। आज हम सुनेंगे इसकी 140वीं कड़ी।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 140वीं कड़ी।

एक ओर समाज सेवा का वो काम हो रहा था जिसका वर्णन मैंने पिछले प्रकरण में किया है, और दूसरी ओर लोगों के दुखों की कहानियां लिखने का काम भी उत्तरोत्तर बढ़ने के पैमाने पर हो रहा था। हजारों लोगों की कहानियां लिखी गईं, उनका कोई असर न हो ये संभव कैसे था? जैसे जैसे मेरे पड़ाव पर लोगों की आमद रफ्त बढ़ती गई, वैसे वैसे नीलहों का क्रोध बढ़ता गया। उनकी ओर से मेरी जांच को बंद कराने के प्रयत्न बढ़ते गए। एक दिन मुझे बिहार सरकार का पत्र मिला, उसका आशय इस प्रकार था, आपकी जांच काफी लंबे समय तक चल चुकी है और अब आपको उसे बंद करके बिहार छोड़ देना चाहिए। पत्र विनयपूर्वक लिखा गया था पर उसका अर्थ स्पष्ट था। मैंने लिखा कि जांच का काम तो अभी देर तक चलेगा और समाप्त होने पर भी जब तक लोगों के दुख दूर न होंगे मेरा इरादा बिहार छोड़कर जाने का नहीं है। मेरी जांच बंद कराने के लिए सरकार के पास एक समुचित उपाय यही था कि वो लोगों की शिकायत को सच मानकर उन्हें दूर करे अथवा शिकायतों को ध्यान में लेकर अपनी जांच समिति नियुक्त करे। गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने मुझे बुलाया और कहा कि वे स्वयं एक जांच समिति नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे उसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। समिति के दूसरे नाम देखने के बाद मैंने साथियों से सलाह की और इस शर्त के साथ सदस्य बनना कबूल किया कि मुझे अपने साथियों से सलाह मशवरा करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए और सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि सदस्य बन जाने से मैं किसानों की हिमायत करना छोड़ नहीं दूंगा, और जांच पूरी पूरी हो जाने पर यदि मुझे संतोष न हुआ तो किसानों का मार्गदर्शन करने की अपनी स्वतंत्रता को

मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। सर एडवर्ड गेट ने इन शर्तों को उचित मानकर उन्हें मंजूर किया। स्वर्गीय सर फ्रैंक स्लाई समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। जांच समिति ने किसानों की सारी शिकायतों को सही ठहराया और निलय गोरों ने उनसे जो रकम अनुचित रीति से वसूल की थी उसका कुछ अंश लौटाने और तीन कठिया के कानून को रद्द करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के सांगोपांग तैयार होने और अंत में कानून के पास होने पर मैं सर एडवर्ड गेट का बहुत बड़ा हाथ इसमें मानता हूं। यदि वे दृढ़ न होते अथवा उन्होंने अपनी कुशलता का पूरा उपयोग न किया होता तो सर्वसम्मत रिपोर्ट तैयार जो हो सकी थी वो नहीं हो पाती और आखिर में जो कानून पास हुआ वो भी नहीं हो पाता। नीलहों की सत्ता बहुत प्रबल थी। रिपोर्ट के पेश हो जाने पर भी उनमें से कुछ के द्वारा बिल का कड़ा विरोध किया गया, पर सर एडवर्ड गेट अंत तक दृढ़ रहे और उन्होंने समिति की सिफारिशों पर पूरा पूरा अमल किया। मैं तो चाहता था कि चंपारण में शुरू किए गए रचनात्मक काम को जारी रखकर लोगों में कुछ वर्षों तक काम करूं, अधिक पाठशालाएं खोलूं और अधिक गांवों में प्रवेश करूं। क्षेत्र तैयार था पर ईश्वर ने मेरे मनोरथ प्रायः पूरे नहीं होने दिए। मैंने सोचा कुछ था और देव मुझे घसीट कर ले गया एक दूसरे ही काम में।

आप सुन रहे थे गांधी चर्चा के अंतर्गत बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन और प्रस्तुति थी अरुण पांडेय की। आज हम सुन रहे थे इसकी 140वीं कड़ी। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रीरामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज की इस कड़ी के गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संसद समीक्षा होगी रात्रि 8 बजे से। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण समय रात्रि 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:31 पर, दोपहर 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार वादन। गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30।

किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे पारसनाथ मौर्य से बातचीत। बातचीत का विषय होगा अनुभव खेती में। इसी कार्यक्रम में लोकगीत प्रस्तुत करेंगी विदुषी सुचरिता गुप्ता। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना।

एक ही कलाकार आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। आज ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुति होगी आशुतोष की। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी फोन इन कार्यक्रम हरियाली से खुशहाली। इसके अलावा गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगी महिलाएं। सुगम संगीत में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी शिल्पा बोस। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार हम लेकर आएंगे सुबह 10 बजे से।

0: काम शृणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैरट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदक ही पदक तालिकायां शीर्ष स्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदक ही सह दशम स्थानम अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

बनारस, आज है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बचपन में उनकी माँ उन्हें गुलाब राय नाम से पुकारती थी। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। सन 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थीं। वे सुशिक्षित महिला थीं, जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनके 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। 1919 में बीए की परीक्षा पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया और लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। आपके साहित्यिक जीवन का आरम्भ सन 1901 से हुआ। शुरुआत में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। सन 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। साथ ही इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदल कर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका ये नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। बनारस, मुंशी प्रेमचंद का समय 2 विश्व युद्धों के बीच का समय है। वह भारतीय जनमानस के उस विश्वास के प्रतीक थे, जिसका ये मानना था कि कर भला तो हो भला। जब आप उनकी लिखी कहानी मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें बूढ़े भगत और उसकी वृद्धा पत्नी के बीच का जो संवाद है, वह संवाद इस बात का प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति में कर्म का पालन महत्वपूर्ण रहा है। प्रतिकार पर परोपकार हमेशा से भारी रहा है और बेहद सामान्य ग्रामीण परिवेश के एक अति सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसका जो स्वरूप दिखलाई देता है, वह दुर्लभ है। मंत्र कहानी में भगत के विषय में मुंशी जी का ये कहना कितना सही है कि जिसने जीवन में कभी तलवार नहीं चलाया, उसके हाथ कांपते हैं, उठते नहीं। भगत की ये परोपकार भावना डॉक्टर चड्ढा को आत्मग्लानि से भर देती है और वो ये कहने पर मजबूर

हो जाता है कि कुछ लोगों का जन्म केवल यश की वर्षा के लिए होता है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। और बनारस, यही वो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आप प्रेमचंद की गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, ईदगाह, पूस की रात या कोई सी भी रचना पढ़ लें, उसमें भारतीय संस्कृति की आत्मा और बनारस की जीवटता साफ दिखाई देती है। और उनकी यही बात उन्हें कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट बनाती है। आइए, कार्यक्रम में आगे चलने के पहले आपको मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास पर आधारित फिल्म और उसमें पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा प्रस्तुत ये ठुमरी सुनवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। बनारस प्रेमचंद का जन्म तत्कालीन बनारस के पास हुआ, हालांकि आज शहर के विस्तार के कारण लमही बनारस का अभिन्न अंग है, इसलिए उनके अंदर एक खांटी बनारसी भी रहता था। वे बनारस की सभ्यता और संस्कृति से भी अच्छी तरह परिचित थे, उनके लेखन में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी संदर्भ में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हमारे साथ जुड़ी हैं एक विशेष मेहमान, जिनका नाम है प्रोफेसर सुमन जैन। आप महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के लेखन में बनारस किस तरह से घुला मिला है।
1: मुंशी प्रेमचंद जीवट रचनाकार थे और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में बनारसी जीवटता दिखाई देती। हम सभी लोग को पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लमही गांव में 1880 में हुआ था और जीवन पर्यंत उन्होंने आर्थिक संकट को सहा है और इसके तमाम संदर्भ उनकी रचनाओं में हमें प्राप्त होते हैं। सिर्फ एक दो घटनाओं का जिक्र करके हम अपनी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद अपने छात्र जीवन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे और उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था, लेकिन उनकी पढ़ाई में बहुत व्यवधान भी आए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की। प्रेमचंद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब बनारस शहर में ही रहने लगे और 5 रुपए के ट्यूशन पर एक वकील के लड़के को पढ़ाते थे। अपना खाना, बर्तन, कपड़ा, सफाई सभी काम स्वयं करते और उपन्यास कहानियां पढ़ते थे। उन्हें उपन्यास कहानियां पढ़ने का खूब चाव था। 13 साल की उम्र में ही प्रेमचंद ने रतननाथ, सरशार, मिर्जा रुसवा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। सन 1904 में प्रेमचंद ने उर्दू हिंदी में ओरिएंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्पेशल वर्नाक्यूलर परीक्षा पास किया और 1905 में ट्रेनिंग कॉलेज से पढ़ाने की सनद पाई। उनके सर्टिफिकेट पर विशेष रूप से लिखा गया, वह हिसाब पढ़ाने में अयोग्य है, नॉट क्वालिफाइड टू टीच मैथमेटिक्स। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वास्तव में कहा जाए तो प्रेमचंद के वास्तविक शिक्षा केंद्र विश्व

0: विश्वविद्यालय नहीं थे, बल्कि वह विश्वविद्यालय था लम्ही के किसान, बनारस के महाजन, किताबों के नोट्स पूंजी बिकवाने वाले बुक सेलर थे। उनके टेक्स्ट थे सैकड़ों उपन्यास कहानियां जो उन्होंने पुस्तकालयों, बुक सेलरों की दुकानें, तमाखू वाले दोस्त के घर पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान के बीज गणित की बेहद अच्छी समझ थी, जिसे उन्होंने खेतों में सीखा था, और जीवन के अर्थशास्त्र को अपनी रचनाओं में उन्होंने हल किया था। मुंशी प्रेमचंद का जीवन बहुत ही प्रेरणा का जीवन है, जिसे हम भारतीय कला और संस्कृति और साहित्य में जब जब हम उन्हें स्मृति में ले आते हैं, विशेष करके जो हमारे विद्यार्थी हैं, या विशेष करके जब हम हमारे जो आम आदमी हैं, उनकी साहित्य को पढ़कर एक ऊर्जा की अनुभूति होती है और जीवन में कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर सुमन जैन को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब बनारस आइए चलते हैं आगे और जान लेते हैं बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस सावन में अभिषेक कर देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने के लिए शिव भक्तों का समूह काशी पहुंचने लगा है। इसी के साथ हरियाली के पूजित सावन में केसरिया असर घुलने की शुरुआत हो गई है। श्रावण प्रतिपदा पर गुरुवार को स्थानीय शिव मंदिरों में भी चहल पहल बढ़ गई। विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में धाम के द्वार से गंगा के घाटों तक केसरिया रंग अपनी मौजूदगी बढ़ाता दिखा। बनारस समर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती का उत्सव पूर्व संध्या पर गुरुवार को लम्ही में आरंभ हो गया। प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र के 2 दिवसीय प्रेमचंद उत्सव का शुभारंभ स्मारक स्थल पर गरिमामय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर मंजरी पांडेय ने प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी की भूमिका में प्रेमचंद की पाती भावपूर्ण तरीके से पढ़ी। वहीं कामायनी के कलाकारों ने शोक का पुरस्कार का पाठ रेडियो नाटक शैली में किया। कहानी के नाट्य पाठ में अमन श्रीवास्तव ने सूत्रधार, अनूप अग्रवाल ने प्रेमचंद, डॉक्टर रजनी अग्रवाल ने लीलावती, मनोरमा शर्मा ने कुमुदिनी, अमलेश श्रीवास्तव ने निरंजन दास, वीणा सहाय ने वृद्ध महिला, डॉक्टर दीपक कुमार ने वाइस चांसलर और डॉक्टर तथा शिव कुमार अग्रवाल ने प्रोफेसर के संवाद बोले। भैया जी बनारसी न केवल साहित्य सेवी थे अपितु साहित्यिक पत्रकारिता के शिखर पुरुष थे। अर्दली बाजार स्थित राजकीय पुस्तकालय के सभागार में गुरुवार को हुए आयोजन में डॉक्टर दयानंद ने कहा कि भैया जी बनारसी को काशी का पहला साहित्यिक संपादक होने का गौरव प्राप्त है। वे बनारसीपन के भी पक्के हिमायती थे। वहीं कुशवाहा कांत अपने दौर के विलक्षण साहित्यकार थे। साहित्यिक संघ और विद्याश्रीन्यास के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी की धरोहर काशी की सृजन परंपरा के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला में ये अध्यक्ष के रूप में बोल रहे थे। बनारस सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में युवा बौद्ध विद्वानों का 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। आज की पीढ़ी के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत, थाईलैंड और श्रीलंका समेत कई देशों के 11 विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने अतिवादी सोच के बजाय संवाद और संतुलित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज जहां खड़ा हूं, यह वही स्थान है जहां से 2500 वर्षों पूर्व भगवान बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था। वहीं केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी ने कहा कि 4 आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद आज की आपस में जुड़ी दुनिया में करुणा और आपसी जिम्मेदारी के सबसे मजबूत मार्गदर्शक हैं। तो बनारस ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब आइए चलते हैं आगे और जान लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। और बनारस अब बातें गुजरे हुए कल की। तो बनारस आपको बता दें कि आज है पुण्यतिथि सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह की। आपने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी माइकल ओ डायर की लंदन में गोली मारकर प्राण ले लिए थे और इस प्रकार उन निर्दोष भारतीयों की हत्या का बदला लिया था। आप सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते थे, इसलिए बाद में इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे थे और उनकी अस्थियां भारत लाई गई थी।

इस महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन। और बनारस आज एक और महान हस्ती का यौमे वफात है, और जिनका नाम है मोहम्मद रफी।

सुरों का शहंशाह, आवाज का जादूगर, मौसिकी का पैगंबर, पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद रफी, ये वो नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। एक ऐसी आवाज जो दुनिया के किसी ना किसी कोने में हर वक्त गूंजती रहती है। सरल, सहज, दोस्तों के दोस्त रफी साहब के सुरों में ठहराव और गहराई थी। वे निश्चित ही उन्हें औरों से अलहदा करती है। सच्चे कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई भी सरहद उसे बांध नहीं सकता और न कोई दीवार उसे रोक सकती है। रफी साहब भी ऐसे ही कलाकार थे। आज उनके यौमे वफात पर हम उन्हें खिराजे अकीदत पेश करते हैं।

0: और अब बनारस आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।
0: जी हाँ, बनारस काशी कथा। और काशी कथा में आज हम बातें करेंगे काशी के चित्रकला। बनारस संगीत की तरह बनारस में चित्रकला का भी एक बनारसी घराना है, जहाँ उत्तर मुगल परंपरा बनारस में आने के बाद बनारसी रंग में रंग गई और फिर ये धारा पिछले 270 वर्षों से अनवरत अनेक परिवर्तनों को समेटे हुए अपनी बनारसियत को सुरक्षित रखे चले आ रही है। इस परंपरा के प्रारंभिक उस्तादों में यदि हम नाम लें तो उस्ताद लालजी मुसव्वर का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पुत्र जमा बख्त के साथ दिल्ली से काशी आए। यहाँ उनकी भेंट उस्ताद सिक्खी ग्वाल से हुई, जिसके माध्यम से काशी में मुगल चित्रकला की अंतिम धारा का विस्तार हुआ। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में उस्ताद बटोही, उस्ताद मूलचंद और उस्ताद रामप्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस्ताद मूलचंद ने देवी देवताओं, हाथी दांत और भित्ति चित्रों में उत्कृष्ट कार्य किया। उनके कार्य आज भी काशी के मंदिरों और भवनों में देखे जा सकते हैं। उस्ताद रामप्रसाद ने मुगल, पहाड़ी और राजस्थानी शैलियों में कार्य करते हुए इस परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने हाथी दांत, भित्ति चित्रों और धार्मिक पुस्तकों जैसे गीता प्रेस के कल्याण में भी अपनी कला का प्रभाव छोड़ा। इस समृद्ध परंपरा के सशक्त संवाहक थे उस्ताद शारदा प्रसाद, जिन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को न केवल संरक्षित किया बल्कि उसे नई दृष्टि भी प्रदान की। वे लघु चित्रों की अनुकृति और प्राचीन चित्रों के संरक्षण में बेहद दक्ष थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में भी चित्रों के संरक्षण और मरम्मत का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो बनारस ये था काशी कथा का आज का अंक।
1: काशी कथा।
0: और अब इसी के साथ दीजिए अनुमति अपने बनारसी बाबू को। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे 29 जुलाई को ही पारित कर दिया था। विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा।
1: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।
2: विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद ने कल ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने 29 जुलाई को ही इसे पारित कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक बार श्रेष्ठ भारत के लिए सपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के

0: लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। ये युवा देश के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल लखनऊ के जनभवन से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और अन्य तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर जिले में 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गाजीपुर में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की अपील की।
2: मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी।
1: श्रावण मास कल से शुरू हो गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और DGP राजीव कृष्ण ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कल समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत की।
3: न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर जो व्यवस्थापना के बिंदु है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु है, डेवलपमेंट के बिंदु है, उन विषयों पर चर्चा हुई।
1: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। जल्द ही यूपी रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
4: यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8,000 से अधिक विवाद के मामलों में 2,173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5,000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान हुआ है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: बागपत जिले के छपरौली कस्बे के कुरैशियान मोहल्ले में कल शाम एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर जाने से मलबे के प्रशासन की मदद से मलबे को हटाकर 2 शवों को बाहर निकाला गया, जबकि गंभीर तौर पर घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रेफर होने के बाद इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। प्रदेश में कई जिलों में हो रही बारिश

बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने सितार वादन। कलाकार हैं विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती। राग है ललित। आपके साथ तबले पर हैं पंडित सपन सिन्हा।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाया राग ललित। आपके साथ तबले पर थे पंडित सपन सिन्हा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, 8 बजने को है समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
4: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
3: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
3: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है

0: इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
2: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के

0: तौर पे अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी। अमर उजाला की सुर्खी है, अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कलेरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ

0: ले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सजा, सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निजाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों से कल तक समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। सीमा कलीरमना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। कल राज्यसभा में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। बुध के रोज लोकसभा में इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। इस बिल में मुख्तलिफ अहम जाब्ते शामिल किए गए हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त किए जाने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। मामलात को जल्द निपटाए जाने को यकीनी बनाने की खातिर ये बिल हर रियासती हुकूमत और मरकज के सिरे इंतजाम इलाके को इख्तियार देता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले और वजीर आजम के दफ्तर के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले से भारत के हर शहरी का ताल्लुक है और इस मुल्क का हर शहरी जाती तौर पर इससे मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 गुज़श्ता दहाई में यकसर तब्दीली वाली साबित हुई है। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर सिंह ने मोदी हुकूमत के पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों और पेपर लीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के अज़्म का इरादा किया। बहस में शामिल होते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजव्वजा तरामीम पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों को रोकने में मुअस्सर साबित नहीं होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआईएम और दीगर ने भी इस बिल पर बहस में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निजाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज में तालीम और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करना लाजिमी हो गया है। वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: कौम आज इनकलाबी मुजाहिद आजादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को कत्ल कर दिया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जलियांवाला बाग कत्लेआम की तलख यादें उधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम का नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में 3 बड़े मजाहिब और 9 आबादियाती निजाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिद आजादी की शहादत को मनाने के लिए पंजाब में उनकी

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी।

0: पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आजादी ऊधम सिंह के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने ऊधम सिंह को गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी की एक अलामत करार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो यकुम अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और वो सभी एहतियाती इकदाम कर रही है।
2: गुजरात में मानसून की सूरत हाल संगीन है क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज 13 जिलों के लिए बहुत शदीद बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें वस्ती और जनूबी गुजरात, नीज, अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। अहमदाबाद और नवसारी समेत बहुत से मुतासर जिलों में स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने जिला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेजी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: जम्मू और कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा NH 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है ताकि समरोली नीलाढ़ा के नजदीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर भाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
0: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते के निस्फ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज़ की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नजदीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई खराब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तशवीश पैदा कर दी है। केरल में 14 जिलों में से 11 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निमटना है। इसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीक़ाकार फराहम करेगा जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आजादाना जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करना, तजारत के बैनुल अक़वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद आबनाए बाबल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ्फुज की कोशिशों का एक हिस्सा है जो बैनुल अक़वामी कानून के ज़ाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूटी और सोमालिया शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ये समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी अवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा जिसका वो मुस्तहिक है और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। حماس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ وہ غزہ میں حماس اور دیگر گروپوں کو مکمل

0: तौर पर गैर मुसल्लह करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। ये धमाका बजाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। अहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिली। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं, जिनमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन खवातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा खवातीन मुजाहरीन पर फायरिंग भी की। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जबकि सीमा कलीरमना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया 110 तमगों के साथ पहला मकाम बरकरार रखे हुए है, जबकि भारत 17 तमगों के साथ 10वीं पोजिशन पर है। भारत ने सोने के 3, चांदी के 10 और कांसे के 4 तमगे जीते हैं। इससे पहले कल दिन में नीरज चोपड़ा ने मर्दों के नेजा फेंकने के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और रोहित यादव के अलावा यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में एथलीट सीमा कलीरमना को खवातीन के डिस्कस थ्रो मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने सीमा कलीरमना की इस हुसूलयाबी के लिए तारीफ की है और कहा है कि ये उनकी लगन, सख्त मेहनत और इस्तेकामत का एक वाज़ेह सबूत है। अज़रबैजान के बाकू शहर में 17 साल तक की उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शेरावत को खवातीन के जुमरे के फाइनल में अमरीकी पहलवान से हारने के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि कमना बाबल और करीमा ने कांसे के तमगे जीते हैं। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए सलामती की खसूसी मीटिंग तलब की। मस्कूरा मीटिंग में मगरबी एशिया के बहरान और भारतीयों के तहफ़ के अलावा तवानाई और खाद के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तारीखी आलमी बहरी सफर से वापस लौटी तीनों अफवाज की खवातीन अफसरान की वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की इज्जत अफजाई। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। शुमाली भारत में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, ये खबर सभी अखबारों में नुमाया है। इस दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है। रोजनामा इनकलाब की एक अहम शह सुर्खी है, दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने की असलाहत मुहिम तेज, इसके तहत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निजाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गाने कार्यक्रम मधुरमा के अंतर्गत कार्यक्रम का आगाज करें, सुनवाएं आपको।

0: वो पहला गाना, आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: संदेश हुआ पूरा कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत। पहला गाना फिल्म जीने की राह से हमने लिया है, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत रचना आनंद बख्शी की है, धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
2: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म थी जीने की राह। अब आइए सुनते हैं एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में, जिनका साथ दिया है लता मंगेशकर ने। साहिर लुधियानवी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म है मन की आँखें।

अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में सुदर्शन फकीर का लिखा गाना। धुन तैयार की है चन्नी सिंह ने, फिल्म है यलगार।

0: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तू भी ना आती।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा में आपका एक बार पुनः स्वागत। आइए सुने अनुराग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का।

सावन को आने दो, आइए सुने इस फिल्म का गाना यशुदास की आवाज़ में। पी पंकज की रचना, राज कमल का संगीत।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र फिल्म का गाना। गीत, संगीत और स्वर है रविंद्र जैन का।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की।

0: हलचल आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: गत दिनों बरेली में ब्रज विज्ञान भारती की ओर से आयोजित विज्ञान शिक्षा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से छात्रों ने अपनी अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। इसके साथ ही

0: जुलाई को बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित परियोजनाओं और अन्य शिकायतों की गहन समीक्षा की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पार्टी द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन में भी शिरकत की।
1: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
2: भगवान शिव की आराधना के लिए विख्यात श्रावण मास का प्रारंभ गुरुवार से हो गया है। यह मास पर्यंत शिव भक्त अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक विभिन्न शिवालयों में करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास शिव को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए सावन मास के प्रत्येक शिवालयों में जलाभिषेक किए जाते हैं। जनपद सीतापुर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों में सावन मास में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सीतापुर मुख्यालय स्थित श्यामनाथ मंदिर समेत बिस्वा के पत्थर शिवाला और नैमिषारण्य समेत अन्य स्थानों पर स्थित शिवालयों और मंदिरों में पूरे सावन मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस अवसर पर मंदिरों में विविध आयोजन समेत मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन में पवित्र नदियों अथवा जलाशयों का जल भरकर भक्तगण विभिन्न शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया को श्रावण कहा जाता है और श्रावण ले जाने वाले भक्तों को श्रावणिया कहा जाता है। सावन में श्रावणियों की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया है।
3: लगातार पुलिस द्वारा पहले बैठकें की गई, सभी डीजे जो संचालक उनसे बात हुई है, जो कावड़ संस्थान और चलाते हैं कमेटियाँ हम सबसे बात हुई है, जितने मंदिर है उसके सबके हमारी ड्यूटी कल सुबह से रहेगी, पोस्टर पार्टी हमारी रहेगी, सेक्टर जोनल स्कीम में मजिस्ट्रेट और सीओ की ड्यूटी लगा दी गई, बहुत शांतिपूर्वक पूरा कावड़ को मुहैया कराया जाएगा।
2: नजूल भूमि समेत सरकार के स्वामित्व वाली इमारतों और प्लाटिंग पर अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपतकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जा चुका है। इस अभियान में जहां प्लाईवुड फैक्ट्री जैसी प्रसिद्ध इमारत को कब्जेदारों से मुक्त कराया गया है, वहीं ऐतिहासिक रंपा महल को भी खाली कराया गया है। पत्रकार राजवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मृतक पत्रकार की पत्नी ने विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हत्याकांड में शामिल वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मृतक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि इस हत्याकांड में शामिल गुनाहगारों को जेल के पीछे भेजा जाए और घटना का निष्पक्ष खुलासा हो। करीब 2 वर्ष पूर्व पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की शरेआम गोली मारकर असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सीतापुर में पहुंचकर महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुना और उनके कल्याण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सदर तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सुजीता कुमारी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है, किंतु महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला कल्याण को सर्वाधिक महत्ता देते हुए वे अपने स्तर से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वे बिना किसी शर्म, संकोच और भय के अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें और उनके निस्तारण के लिए प्रयास करें। यदि जिला स्तर पर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे महिला कल्याण विभाग समेत राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला आयोग महिलाओं के हितों के लिए सदैव अग्रसर रहता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना आई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे जनपद प्रयागराज से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्रीमती अंजलि कुमारी। इनके पिता का नाम है मनोज सिंह। ये निवासिनी हैं ग्राम दामोदरपुर पोस्ट रामपुर थाना गौरा बाजार जनपद छपरा बिहार की। ये पिछले 23 जून 2026 सुबह 3:47 के लगभग से लापता हैं। श्रीमती अंजलि कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है, काले बाल। श्रीमती अंजलि कुमारी के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे जनपद प्रयागराज को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ये सूचना आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है पूजा देवी। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश। ये निवासिनी हैं सलेमपुर थाना सकलडीहा जनपद चंदौली की। ये पिछले 20 मई 2026 रात्रि 8 बजे से लापता हैं। पूजा देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 26 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। ये लापता होने के समय आसमानी रंग की साड़ी पहने हुए हैं। पूजा देवी के संबंध में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीषा यादव, इनके पिता का नाम सुखराम यादव, ये निवासिनी हैं कछारडीह महासमुंद मोधा छत्तीसगढ़ की। ये पिछले 30 मई 2026 से लापता हैं। मनीषा यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। ये लापता होने के समय सफ़ेद सूट सलवार पहने हुए हैं। मनीषा यादव के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करने की कृपा करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से ही प्राप्त एक और सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है दिनेश पटेल। इनके पिता का नाम हरिहर पटेल। ये निवासी हैं पिसियाही थाना कछवा जनपद मिर्जापुर के। ये पिछले 1 जून 2026 से सुबह 7 बजे से लापता हैं। दिनेश पटेल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। यह लापता होने के समय आसमानी धारीदार फुल शर्ट और हल्के काले रंग का पैंट पहने हुए हैं। इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। दिनेश पटेल के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को देने की कृपा करें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त तो हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: एस्ता जाहिद का आज आपकी खिदमत में पेश है दास्तान कलमकार तिलस्म लम्हे के सुल्तान धनपत राय उर्फ नवाब राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद की दास्तान। तो ख्वातीनो हजरात अपनी समातों को इस बज़्म अदब की तरफ मुतवज्जो फरमाएं, क्योंकि आज जिक्र होगा हकीकत की कोख से जन्म लेने वाले उस रूहानी मुजस्सिम का जिसने मुफलिसी और तंगदस्ती के माहौल में आंखें तो खुली लेकिन अपने आसपास के माहौल से मायूस न हुआ। उस माहौल में गुजर बसर करने वालों को अमर कर दिया उसने अपनी कलम की स्याही से। सामईन आज की इस दास्तान में न तो किसी सुलेमानी चिलमन से कोई परी नमूदार होगी और न ही किसी जादुई चिराग से कोई जिन्न बाहर आएगा। आज जिक्र होगा जमीनी हकीकत पर उस मुसन्निफ का जिसके अफसाने हैं तो हकीकी वाकयात और सच्ची मालूमात पर मबनी मगर उनमें रस्म रिवाज अय्यारी वगैरह वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो चलिए दास्तान गोई की मुकद्दस रिवायत के मुताबिक आज हम महफिल अदब के औराक में बंधी पहली और पेचीदा गिरह को खोलने जा रहे हैं जिसमें गुर्बत और मुफलिसी की मिट्टी से कलम का एक ऐसा दरवेश सिफत मुसन्निफ पैदा हुआ जिसने माफोकुल फितरत दास्तानों के दावों और ख्याली शहजादों के बुतों को तोड़ डाला और अदब के मुकद्दस ताज को देखानों और जमाने के ठुकराए हुए मुफलिस तबके के सर पर ला सजाया। तसव्वुर कीजिए उत्तर प्रदेश के बनारस के गुमनाम से गांव लम्हे के बेहद सादगी से जिंदगी गुजारने वाले एक मामूली किसान मुंशी अजायब लाल के बारे में जिनके घर 31 जुलाई सन 1880 की उस धुंधली सुबह एक मासूम की किलकारियां गूंजें और तकदीर ने उस गरीब का नाम भी दिया तो धनपत राय। सामईन मुफलिसी से घबरा के कभी मिर्जा गालिब ने भी ये शेर कहा था,
1: कैदे हयात बंदो गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों।
0: गम के पहाड़ टूटे तो महज 8 साल की उम्र में माँ आनंदी देवी गुजर गईं और वालिद ने दूसरी शादी

कर ली। मासूम बचपन और सौतेली माँ की ज्यादतियाँ, उफ। जब दहकानों से गुजारा न हुआ तो वालिद ने महज 20 रुपये पगार पर डाकखाने में मुंशी की नौकरी कर ली। तन्हाई और तंगदस्ती के इस दौर में धनपत राय अक्सर बनारस की एक दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे, जहां पर उर्दू की किताबों का अंबार लगा रहता था। यहीं पर धनपत राय ने सैकड़ों किताबें बैठकर पढ़ डाली और इस अमल ने उनके अंदर के मुसन्निफ को दस्तक दे डाली। साथ ही एक मदरसे के मौलवी से उर्दू और फारसी भी सीख ली। गौर और फिक्र से सुनिए मेरे मुअज्जज़ सामईन, क्योंकि आप खुलने जा रही है दूसरी किरह। कहते हैं 1898 से 1905 का दौर था। धनपत राय के लिए ये बेहद नासुक और जद्दोजहद से भरा रहा। जेब खाली थी, भूख और तंग दस्ती से मजबूर होकर एक दिन धनपत राय बनारस के एक कुतुब फरोश के पास महज 5 रुपये की खातिर अपनी वो किताबें बेचने गए जिनसे उन्हें बेहद लगाव था। यहीं पर उनकी मुलाकात एक स्कूल के हेडमास्टर से हुई और 18 रुपये माह पर उन्हें सरकारी नौकरी बतौर टीचर मिल गयी। सामईन, 1906 में शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से बेहद सादगी से उन्होंने शादी की और ऐसे मुश्किल हालात में भी दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। तो ये था आला किरदार धनपत राय का। सामईन, वक्त और उम्र के साथ साथ धनपत राय उर्फ प्रेमचंद के किरदार भी अलग अलग शक्लें अख्तियार करने लगे। ये 1916 से 1920 के दरमियान की बात है। प्रेमचंद का तबादला गोरखपुर के नॉर्मल स्कूल में हुआ तो वो अक्सर सरकारी क्वार्टर के बाहर आसपास के बच्चों के साथ बच्चा बन जाते और उनके साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। इसी गोरखपुर के उनके घर के पीछे मुबारक खान शहीद ईदगाह को देखकर ही उन्होंने अपनी कहानी ईदगाह जैसे शाहकार और उसके किरदार हामिद को तराशा। हजरात, आइए अब खोलते हैं दास्तान की तीसरी किरह। नौजवान धनपत राय का उर्दू अदब की दहलीज पर पांव जमाने की कोशिशों का दौर था। अपने तिलस्मी कलम के लिए उन्होंने खुद को नवाब राय के नाम से मुखातिब किया और मजदूरों और देहकानों के हालात, मजबूरी और बेबसी को उनकी कलम ने बड़ी बेबाकी से बयान करना शुरू किया। लेकिन हुजूर, वो कहते हैं ना, सच की राह पर चलने वालों की राहों में आजमाइशों के बेशुमार कांटे होते हैं। अब जिक्र करते हैं सन 1908 का, जब नवाब राय का पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन शाया हुआ तो बरतानिया हुकूमत के ऐवानों में मानो जलजला सा आ गया। उनके इस मजमुए में हुब्बुल वतनी की एक ऐसी आतिश छुपी थी जिसे अंग्रेजी हुकूमत बर्दाश्त न कर सकी और नवाब राय को बागी करार देकर सोजे वतन की हजारों कॉपियों को कलेक्टर ने जब्त कर लिया और भरे बाजार में आतिश ज़दा कर दिया गया। अब हुजूर, हुकूमत ने इस ज्यादती के बाद ये समझा कि उन्होंने एक बागी कलमकार की कलम को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन ये उनकी सरासर भूल थी, क्योंकि जब एक गिरह बंद होती है तो अभी तो दूसरी गिरह खुलती है। उनकी इस ज्यादती ने नवाब राय को तो खामोश कर दिया, लेकिन प्रेमचंद को नई जिंदगी बख्श दी। उस दौर में जमाना मैगजीन के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम ने, जो कि उनके खैर ख्वाहों में से थे, उन्हें तजवीज किया कि वो प्रेमचंद के नाम से लिखें और फिर इस तरह लम्हे का वो गुमनाम धनपत राय सोजे वतन के नवाब राय से प्रेमचंद बन गया। तो दास्तान की अगली गिरह खुलने वाली है। दिल थाम के सुनिए सामईन के आगे क्या हुआ। आइए अब आपको याद कराते हैं सन 1921 का वो जमाना जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था और उन्होंने तमाम अहले वतन से अपील की थी कि वो लोग सरकारी नौकरी से दस्तबरदार हो जाएं। ये फरवरी 1921 के असहयोग आंदोलन यानी कि तहरीके तर्क मवालात की एक कड़ी थी। प्रेमचंद उस वक्त महकमाए तालीम में डिप्टी सब इंस्पेक्टर थे। घर में दो छोटे बच्चे, बीमार बीवी और खराब हालात के बावजूद उन्होंने गांधी जी की अपील से मुतासिर होकर फौरन सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। घर में चूल्हा जलना दूभर हो गया, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के सीने में तो हुब्बुल वतनी की चिंगारियां भड़क की शोला बन चुकी थीं। दरअसल प्रेमचंद ने मुश्किल हालात देखे नहीं थे, बल्कि खुद जिए थे। यही वजह है कि आज भी उनके अफसाने सिर्फ पढ़े नहीं जाते,
जिंदा हकीकत की तरह हमारे आसपास देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं।

0: फैज अहमद फैज का एक बेहद मशहूर शेर जैसे मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी की अक्कासी के लिए ही लिखा गया है।
1: मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबा ली है उंगलियां मैंने।
0: सामईन वो दास्तान ही क्या जहां हर वक्फे पर एक नई रस्म, नई बज्म, नया तिलस्म और नई अय्यारी से सामना ना हो। तो आइए अब अगली गिरह में इस अदीब के अफसानवी किरदारों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो दास्तान गोई के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनकी दास्तानों के कुछ किरदारों से। तो साहिबान आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अफसाना कफन के बेबाक, निकम्मे, ढीठ, बेबस और अय्यार घीसू और माधव से। आपको याद तो होंगे ना, आइए अफसाना कफन के इन किरदारों से मिलते हैं। अपनी घरवाली की फौत होने पर चंदे में मिले कफन के पैसों को भी नशे में उड़ाने वाला घीसू कहता है,
2: कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर में जल ही तो जाता। ये जो मरने वाली ने हमें पूरी कचौरी खिलाई है, इसका पुण्य उसे जन्नत में जरूर मिलेगा।
1: हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी थी, मरने पर भी हमें सुलह करवा गई। ये दुनिया बड़ी अजीब है।
0: सामईन आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं प्रेमचंद के शाहकार नॉवेल गोदान की धनिया से। होरी की मौत का वक्त अनकरीब है। गुर्बत का ये आलम है कि घर में एक थैला भी नहीं है, लेकिन पंडित जी कहते हैं,
2: गोदान करो वरना आत्मा भटकेगी।
0: धनिया अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को कमर में लपेटकर आंचल से तीन आने निकालकर पंडित के मुंह पर मारती है और रोती हुई चिल्लाती है,
3: महाराज घर में न गाय है न बछिया, बस अब यही तीन आने हैं, इन्हीं का गोदान है, ले लो और जान बख्श दो। तुम जैसों का पेट तो किसान की मौत से भी नहीं भरता।
0: सामईन, धनिया की शक्ल में प्रेमचंद ने समाज के घिसे पिटे आडंबरों और रीति रिवाजों में जकड़ी एक ऐसी औरत की तस्वीर खींची है जो गरीब है मगर उसकी हिम्मत और हौसले को सलाम है। कोई जमींदार या रस्मों के हवाले से मां लेटने वाला पंडित भी उसे पस्त न कर सका। धनिया कहती है, जब पानी सर से गुजर जाए तो डर कैसा। सामईन अब तसव्वुर कीजिए एक ऐसे किसान की लाचारी और बेबसी का जो आपकी आंखें नम कर जाएगा। पूस की रात के किरदार हल्कू के दर्द और बेबसी का, उस कपकपाती ठंड को महसूस कीजिए जो एक किसान अपनी फसल को, अपने असासे को अपनी औलाद की तरह महफूज करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता है, जी जान एक कर देता है, लेकिन वो हार जाता है हालात से। उस माहौल को महसूस कीजिए उस एक सर्द कपकपाती रात में जब अपने कुत्ते जबरा को गले से चिमटाए हल्कू बैठा है और उसकी बीवी रोते हुए आकर बताती है,
3: हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया।
0: लेकिन ये सुनकर हल्कू रोता नहीं है बल्कि एक ठंडी सांस भरकर कहता है,
1: फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, कम से कम ठंड में इस खुले आसमान के नीचे रात को सोना तो नहीं पड़ेगा ना।
0: यानी बेबसी को ही हल्कू ने राहत का दूसरा नाम दे दिया, अपने हालात से लड़ने का हथियार ढूंढ लिया था। दरअसल प्रेमचंद के ये किरदार जिंदा हैं, आज भी हमारे आसपास। किसान, गरीबी, भूख, बेबसी, हर दौर की वो कड़वी हकीकत है जिसे आप और हम नकार नहीं सकते। चलते फिरते आम जिंदगी में आपको घीसू, माधव, धनिया और हल्कू अलग अलग नामों और किरदारों से कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे।
4: मुंशी जी के किरदारों को आज के इस अहद हाजिर के मुआशरे में सरे बाजार खड़ा करके देखते हैं कि क्या वो मुंतकिल हो चुके हैं या आज भी हमारे और आपके दरमियान सांस ले रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उनके मशहूर और मारूफ नॉवेल सेवा सदन की सुमन का। सामईन, वो सुमन और उसके जैसी मजबूर खवातीन आज भी आपको मजामीन नौ के पर्दे पर या कारखाना तिजारत के उन ऐवानों में कहीं न कहीं मिल जाएगी जहां आज का बेरहम मुआशरा उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसकी इस्मत और उसके फन की बोली लगाता है। जो जहनी कश्मकश और जो कर्ब सुमन ने उस दौर में झेला था, उसी कर्ब से आज के समाज में भी कई सुमन गुजर रही हैं। बस अगर बदला है तो नाम और पैरहन भर, वो कर्ब आज भी लादवा है। और अब सामईन जरा तसव्वुर कीजिए मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल रंग भूमि के उस गदागर सूरदास के बारे में जिसके पास महज एक शिकस्ता अराजी का टुकड़ा है। वो नाबीना सूरदास अपनी उस अराजी के लिए पूरे निजाम हुकूमत से टकरा जाता है। वो कहता है, फतह वो नहीं जो अग्यार को मगलूब कर दे, फतह तो वो है जो अपने ईमान को शिकस्त ना होने दे। और सामईन आखिरकार वो इसी मारा आराई में अपनी जान कुर्बान कर देता है। सामईन आप सोच

0: रहे होंगे कि आखिर आज वो नाबीना सूरदास कहाँ है? है सामईन, है आज वो सूरदास आपको शहरारों के किनारे अपने पुश्तैनी अराजी सरमायादारों के हाथों छिनते हुए देखने वाले उन मफलूकुल हाल दिकान की सूरत में मिलेगा। सूरदास की बेअमा जंग आज का हर वो शख्स लड़ रहा है जो साहिब इख्तदार के आगे सरबसजूद होने से इनकार कर देता है। सामईन इकराम, यकीनन हम और आप मुंशी जी की नॉवेल निर्मला की किरदार निर्मला को भला कैसे फरामोश कर सकते हैं? दहेज की लानत की वजह से जिसका अख्त उसकी उम्र से दुगने बुजुर्ग मुंशी तोताराम से कर दिया जाता है, वही निर्मला सामईन जो घुट घुट के अपने ही शबाब के कफन में लिपट कर रहलत फरमा जाती है। जी हाँ, आज भी कोई न कोई निर्मला कहीं न कहीं निकाह के सुतूर पर अपनी उम्र, अपनी शक्ल सूरत और अपने वालिद की बिसात का सौदा करती हुई किसी अनचाहे असीर में घुट घुट कर जी रही है। दरअसल हम आज भी उसी समाज में जी रहे हैं जहाँ बेटी की विलादत पर वालिद की पेशानी पर शिकन मलाल आ जाती है। और अब जरा इस कसीरुल मजा मगर अशकामेज अफसाने को याद कीजिए। बड़े भाई साहब, जी हाँ वही बड़े भाई साहब जो शबो रोज कुतुब पीने में गर्क रहते हैं और इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं मगर तजर्बात की अजमत का ढिंडोरा पीटते रहते हैं और उनका खुद भाई लहो लाभ में मसरूफ रहकर भी अव्वल आ जाता है। बड़े भाई साहब फरमाते हैं, किताबी कीड़ा होना अलग शय है और मुआशरे के नफ्स को समझना जुदा बात है। सामईन, आज वो बड़े भाई साहब आपको हर उस दर्सगाह तिजारत के बाहर मिल जाएंगे जहाँ पर नौनिहालों के जहन पर आज फीसद नंबरों का बारे गरा मसलत कर दिया गया है। ये अंधी दौड़े आज भी जारी हैं। आज के इस मुसाबकत के दौर में अपने लख्त जिगर को एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ा रहा है जहाँ सनदें तो बहुत कसीर मिल रही हैं मगर अखलाकियत और आगाही कहीं पीछे छूट गए हैं। सच तो ये है सामईन, मुंशी प्रेमचंद ने जो तहरीर किया वो महज एक सदी कबल का गुजरा हुआ कल नहीं था, वो हमारा अहले इमरोज भी है और आने वाला कल भी। जब तक हमारे माशरे में अमीरी और गरीबी का बोध रहेगा, जब तक जज्बात का सौदा बाजार मिस्र में होता रहेगा, प्रेमचंद का एक एक किरदार जिंदा जावेद रहेगा, हमारे चश्म से झांकेगा, हमारे जमीर को झिंझोड़ता रहेगा, कचोटता रहेगा। तो चलिए सामईन, अब किरदारों की दुनिया से बाहर आते हैं, मुंशी प्रेमचंद की एक और जद्दोजहद के बंधन में बंदी की रह खोलते हैं जो इस खुदकर्ज और तिजारती दुनिया और एक दरवेशाना मिजाज मुसन्निफ के बीच की जंग की अक्कासी करती है। प्रेमचंद ने कौम की आवाज बुलंद करने के लिए सन 1930 में अदबी जरीदा हंस निकाला, लेकिन इस जुनून शौक ने उन्हें माली मसाब के एक ऐसे दलदल में गिरा दिया जहां से बाहर निकलना मुहाल था। इस गिरह को सुलझाने की खातिर उन्होंने सिनेमा नगरी का भी रुख किया मगर वहाँ की नुमाइश और सरमायादारी उनके साफ गो मिजाज को रास न आई। आलीजा, अब दिल थाम के बैठिए जनाब, क्योंकि इस दास्तान कलमकार की आखिरी गिरह के बंद खुलने जा रहे हैं जो जिंदगी और मौत के दरमियान का सफर तमाम करेगी। बात 1936 की है, लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई जहां मुंशी प्रेमचंद को पहला सदर मुंतखब किया गया। वहां पर वो बिजली की तरह कौंधे और फिर शेर की तरह दहाड़े।
1: हमें अदब का मेयार बदलना होगा, अब हमारा अदब मजदूरों के माथे के पसीने में चमकेगा।
0: मगर सामईन, अफसोस, मुसलसल बीमारी और मुफलिसी की मार ने उनके जिस्म जान को निहायत लाफुलागर कर दिया था। 8 अक्टूबर सन 1936 की वो एक सर्द सुबह थी जब इस अजीम कलमकार ने इस दुनियाए फानी में अपनी आखिरी सांसें ली और जिंदगानी की ये फानी गिरह हमेशा हमेशा के लिए खुल गई।
2: जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
0: तो سامعین محفل، یہ تھی داستان اس مقدس قلمکار کی جس کی زندگی کی ہر گرہ نے اس کے اندر ایک نئے کردار کو جنم دیا۔ زمانے کے حاکموں نے ان کی ادبی خدمات کے لیے یوں تو انہیں کوئی تمغہ نہیں دیا، لیکن عوام اور بنگال کے عظیم مصنف شرد چند چٹوپادھیائی نے انہیں ناول سمراٹ کے لافانی تخت پر بٹھا دیا۔ ان کا

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स और वेब्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं। लोक संगीत इस संदेश के पार।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: संदेश हुआ पूरा। कार्यक्रम लोक संगीत में आपका स्वागत। आज की कलाकार हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता। आइए कार्यक्रम की शुरुआत इनकी गाई इस कजरी से करते हैं।

विदुषी सुचरिता गुप्ता के गाए इस चौमासा के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:20 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। पहला गाना अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में, समीर का लिखा, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म है अंदाज।

अब आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत विजू शाह का।

अब आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का गाना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अब आइए सुने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा गाना। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: जोकर।
1: प्यार दीवाना होता है, आइए सुने इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। मदन पाल की रचना, बाबुल बोस का संगीत।

ये दिल आशिकाना। आइए सुने इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

आप सुन रहे थे छुपा रुस्तम फिल्म का गाना अलका याग्निक की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे, आनंद मिलिंद का संगीत था। अब आइए सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं नीरज श्रीधर, सोजैन टिमैलो की, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

हम हैं राही प्यार के। आइए सुने इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं और हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा अपने खास प्रोग्राम का यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का। और आज का ये कार्यक्रम आधारित है हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर। तो बस हो जाइए तैयार, ये नंबर नोट कर लीजिए 7905519981 यानी 7905519981। इस नंबर पर आपको भेजना है संदेश। और हाँ, पहले तो सुन लीजिए उन फिल्मों के नाम जिनके लिए आपको संदेश भेजना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे श्रोताओं को इसलिए इंतज़ार होता है आज के दिन का क्योंकि आज उन्हें तुरंत मैसेज भेजने के बाद अपने पसंद के गाने सुनने का मौका मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे कितने ज़्यादा श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़ पाते हैं। आज इस प्रोग्राम में आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए आपके साथ रहेगी आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब नोट कर लीजिए उन फिल्मों के नाम जिनके लिए आपको हमें संदेश भेजना है। और श्रोताओं, संदेश भेजने से पहले एक खास बात ये कि अगर आप बाद की फिल्मों के गाने सुनना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर संदेश भेजिए क्योंकि नाम पहले इतने सारे आ जाते हैं कि वो दूसरी फिल्मों के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए आप बारी बारी से संदेश भेजिएगा। फिल्मों के नाम नोट करिए उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हम आपको सुनवाएंगे। जीवन मृत्यु, तकदीर, प्यार का मौसम, पगला कहीं का, हम दोनों। फिल्मों के नाम एक बार फिर नोट कर लीजिए। जीवन मृत्यु, तकदीर, प्यार का मौसम, हम दोनों और पगला कहीं का। इस क्रम में फिल्मों के गाने हम आपको सुनवाएंगे और हमें उम्मीद है कि अगर आपको इन फिल्मों के गीत सुनने हैं तो इसी क्रम में हमें संदेश भेजिए, हम आपके संदेश अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना तो शुरू हो चुका है लेकिन सावनी फुहार अभी आनी सच में बाकी है क्योंकि अभी थोड़ा सा उमस का माहौल चल रहा है। थोड़ी सी सावनी फुहार आ जाएगी तो और भी मौसम रंगीन हो जाएगा और हमें इंतज़ार है इसी मौसम का और गाने भी हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले बता दें आज कौन सी तारीख है। आज है 31 जुलाई। और क्यों ये तारीख कुछ मायने में खास है, वो इसलिए क्योंकि एक तो आज मुंशी प्रेमचंद जी का

जन्मदिवस है, और साथ ही एक और कलाकार है जो हम सब के दिलों में बसा हुआ है और जिनके गाने सुनकर हमारी सुबह होती है और जिनके गाने सुनते सुनते रात हो जाती है। वो कलाकार हम सब के बीच में अब नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी यादें हमारे बीच आज भी हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम जब तक रहें या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो इनके गाने सुनती रहे। और वो कलाकार है मोहम्मद रफ़ी साहब, आज है उनकी पुण्यतिथि और आज के दिन हम उनको याद करेंगे और उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु फिल्म का गीत, और पहले वो गीत सुन लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे किन श्रोताओं ने इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है। तो लीजिए, ये गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पर।

दोस्तों, इसी रिमझिम बरसते सावन का हम सबको इंतजार है। और ये गीत जो आपने अभी सुना वो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ में था। जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा था, ये हैं जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा,

केदबई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान। मरहारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर और विशाल नवानकर। पदमपुर जिला गंगानगर से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। गांव गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडो।

वानी कीरत राय बादवानी, प्रदीप कुमार साहू और परिवार के बाकी के सदस्य। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में एक बार ही संदेश भेजें, और खास तौर पर जब संदेश भेजें तो उसमें श्रोताओं के नाम कुछ ही हो। बहुत ज्यादा श्रोताओं के नाम होने से समय ज्यादा लगता है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जगवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। बहुत सारे श्रोताओं ने आखिरी जो गाना बजना है उसका पहले ही संदेश भेज दिया है, लेकिन अगर ये संदेश खुल जाता है और हम उसको शामिल नहीं करते वो छूट जाता है। तो आपको बता दें, ये संदेश हमारे पास आया है पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस, अयेजा, आफिया, सदफ, सरोज, चौक से करमुल्ला ठेकेदार, नासिम बेगम, आयशा खान और हादिया खान। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह। आर्य नगर कोहका भिलाई से है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, इन्होंने लदावली जिला मुरादाबाद से ये संदेश भेजा है। और चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। छत्तीसगढ़ परारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। गिरना पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। मोताला महाराष्ट्र से विरजय सुरलकर, रतन मारा सुरलकर, गौरी सुरलकर, कुमकुम और आराध्या। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, इन्होंने भेजा है संदेश पिंका वाला चौक गोराया जालंधर पंजाब से। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवानंद और सत्यम आनंद का संदेश आया पाकुड़ झारखंड से। और बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पे चौहान और बेबी गर्वी। राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाणे, ज्योति नरवाणे, आकांक्षा नरवाणे और आकाश कुमार। कुंटा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से हैं प्रवीण हागोड़े, योगिता, कुमारी प्रियाली और पार्थ और इनके परिवार के सदस्य। श्रोताओं, आपसे बार बार ये अनुरोध है कि आपका नाम दूसरी फिल्म के गाने के साथ चला जाता है, और इसका कारण ये है कि आप बहुत पहले ये संदेश भेज देते हैं।
आप थोड़ा इंतजार

करिए और बाद में भेजेंगे तो आप जो पसंद करते हैं गाने उसी के साथ आपके नाम शामिल होंगे। ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आज़ाद, बद्रुद्दीन अंसारी, इन्होंने बड़ी दीहा धरारा से हमें ये संदेश भेजा है। और गदाईपुर दीदारगंज से अजय, विजय, विनय, पंकज, योगेश, अयांश, आराध्या, प्रमिला और दीपचंद। अडार नांदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार।

खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, साबतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनद मुजावर। और अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं और अगला गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें ये संदेश भेजा है। और अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म तकदीर से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे प्यार का मौसम फिल्म का गीत। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए।

दोस्तों, ये आवाज़, ये कलाकार ऐसा है कि इसकी याद कभी जाती ही नहीं। और मोहम्मद रफ़ी जी की आज पुण्यतिथि है और अपने 36 साल के करियर में रफ़ी साहब ने लगभग 7,000 से ज़्यादा गाने गाए। देवानंद से लेकर धर्मेंद्र और दिलीप कुमार से लेकर शमी कपूर तक की आवाज़ बनी और वो आवाज़ आज भी हमारे दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। और श्रोतो, आपसे एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब कार्यक्रम शुरू होता है और फिल्मों के नाम बताए जाते हैं, उसके साथ ही आप इतने सारे संदेश भेज देते हैं कि उनको एक साथ पढ़ना संभव नहीं होता है, तो आप बस ये जान लीजिए कि आपके नाम इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, किस गीत के लिए शामिल होंगे, ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक भी पहली फिल्म के गीत के लिए हमारे पास संदेश आए हैं काफ़ी सारे। तो अगर प्रोग्राम पूरा सुनना चाहते हैं, गाना पूरा सुनना चाहते हैं, तो बस अपने नाम सुनिए और फिल्मों के गीतों का आनंद लीजिए। ये हमारे पास जो संदेश आया है, चौरादा बाजार नवापारा छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर और ज्योति ठाकुर का। तकिया मड़ियाहू से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमस शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद रोमिश शाह, मोहम्मद हसरत शाह, मोहम्मद साजिद शाह और मोहम्मद अबान शाह। साउथ दिल्ली से हैं गुरमीत सिंह का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ सायना और निदान शर्मा। ग्राम शिरटे जिला सांगली से ये हैं हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मेघलानी और बबीता मेघलानी। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। गुरमीत सिंह, गुरसुख सिंह, नगर पंचायत बिलसंडा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इन्होंने संदेश भेजा है। और नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। जलालीपुरा वाराणसी से हृदय प्रजापति, विनय प्रजापति, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्जवल दास मानिकपुरी। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहिब कंगणकर, साखरबाई, परमेश्वर रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कंगणकर परिवार के बाकी के सदस्य। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी। सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।

रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, गनगोला दातागंज जिला बदायूं से हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आपका संदेश पहले ही आ चुका है और दोबारा संदेश ना भेजें। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी, माँ काली स्थान नवली गाजीपुर से इन्होंने संदेश भेजा है और सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह, प्रिंस पासवान, इन्होंने चंडीगढ़ से भेजा है संदेश। यहीं से हैं सुल्तानारी। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। वलीदपुर मढ़ा मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप, भगेलू यादव और मास्टर राम समुझ यादव। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत।

अमलाई एमपी से ये संदेश हमारे पास आया है, राजेश मिश्रा, जवाहरलाल पटेल और शायदा शारदा। गांव डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलह जिला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सब्जी मंडी बुल्ढाना से शबीर हुसैन, शहदाद हुसैन, मुंजू बाबा और आयजा अनम। श्रोताओं, आपके भर भर के संदेश आते हैं और इतने ज्यादा संदेश आते हैं कि उनमें ये छांटना मुश्किल हो जाता है कि किस फिल्म के लिए हैं। और अभी तक आप देखिए कि जीवन मृत्यु फिल्म के लिए भी हमारे पास संदेश पड़े हुए हैं और इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि संभव नहीं है कि हम बता सकें कि कितने लोगों ने किस किस फिल्म के लिए संदेश भेजा है। गमरिया जमशेदपुर से रोहन आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से सुंदर सुमन जायसवाल, ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुपेंद्र सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। अमितेश कुमार तिवारी, इन्होंने बलिया से संदेश भेजा है। और कोटवा कपिलधारा, सरायमोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री सारंग, ओमना शिवांग, अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी ने संदेश भेजा है। सोनवर्षा खानपुर, चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दनियाल खान, फूले नगर, अंबीवाली, मुंबई महाराष्ट्र से ये संदेश आया है। और ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। जेल रोड रायगढ़ राजस्थान से हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुण, श्रेणिका और श्रेणिजा। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्नामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से संदेश भेजा है। और छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन और मनोज सेन ने संदेश भेजा है। ये है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। नेहरू चौक पैंथर से सुरेश जाधव, अनिता जाधव।

सोनल प्रसाद जाधव, पोटियां कला दो से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। और अब चलते हैं अगले गीत की ओर, क्योंकि संदेशों की संख्या बहुत ज्यादा है और संभव नहीं है कि हम लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे फरमाइशी गीतों का है, तो गीत भी शामिल होने चाहिए। और अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, बोल मजरू सुल्तानपुरी की और धुन राहुल देव बर्मन की। और अब ये गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पर।

रोहासी पलारी छत्तीसगढ़ से चेतन साहू, गायत्री साहू, खुशी साहू, रेशमा साहू और वर्षा साहू। शिवा भारती ने आजमगढ़ से भेजा है संदेश।

श्रोताओं, अभी तक हमारे जो श्रोता हैं वो संदेश जीवन मृत्यु फिल्म के लिए ही अभी तक आए हुए हैं, और इतने ज्यादा संदेश हैं कि समय लगता है इन संदेशों को शामिल करने में। तो अगर किसी और फिल्म के गीत के लिए आपका नाम चला जाए तो उसके लिए नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हम रफ़ी साहब के गीत सुनवा रहे हैं, और इस क्रम में ये बता दें कि रफ़ी साहब का इस करियर में आना कैसे हुआ। एक अलग ही वाक्या हुआ था जब श्याम सुंदर साहब ऑल इंडिया एग्जिबिशन में, म्यूजिक कंपोजर श्याम सुंदर साहब जो है वो उस समय के सुपरस्टार KL सहगल साहब का स्टेज पर वेट कर रहे थे, और अचानक लाइट चली गई। और जब लाइट चली गई तो उस समय बड़े भाई साहब के अनुरोध पर एक 13 साल के लड़के ने स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। आवाज़ इतनी मधुर थी कि सभी उसमें खो गए, और जब तक लाइट आई तब तक संगीत रोशन हो चुका था। और ये 13 साल का लड़का कोई और नहीं था, मोहम्मद रफ़ी।

साहब थे और जिन्हें श्याम सुंदर साहब ने आगे चलकर पहला ब्रेक दिया और इस तरह इनका इस करियर में आना हुआ। और अब हमारे श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें संदेश भेजा है, अगला गाना आपको हम सुनवाएंगे हम दोनों फिल्म का, उससे पहले श्रोताओं के नाम शामिल कर लेते हैं। ये हैं अश्विन, सानू, शोभनाथ, अवस्थी और इनके मित्र, इन्होंने शिवराजपुर से हमें संदेश भेजा है। और जिला संबलपुर उड़ीसा से हैं रंजीत प्रसाद, सुधीर शुक्ला और डमरूधर। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सोमन, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डागी, राजगढ़ मध्य प्रदेश से इनका संदेश आया है। और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से हैं डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्व देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षता देशमुख। ग्राम भीलखेड़ी तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं धनराज बैरागी और सीमा बैरागी किट्टू। रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। अगला संदेश है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन। शिमला हिमाचल से हैं हमारे श्रोता अनिक राज यादव और इन्होंने लिखा है कि हिमाचल से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये एयरफोर्स यहाँ पर फोर्स में कार्यरत हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश जौनपुर के हैं और वाराणसी को काफी सालों से सुन रहे हैं। स्वागत है आपका भी और हमारे सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम में स्वागत होता है। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदीबाई नागरी। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा और श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। तेलंगाना वारंगल से हैं खाजा रिजवानुद्दीन, खाजा फासी उद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया। वटिंडखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। मसूरी बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। ग्राम तंगौरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर और सहिजप्रीत सिंह।

फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और खेड़ा परिवार के बाकी जो भी सदस्य बचे हैं उन सब की तरफ से ये संदेश था। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर ने डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहूजा। धामणगांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा डेठे पाटिल, भागवत डेठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी डेठे पाटिल और कुमारी सनिका डेठे पाटिल हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। झारखंड से हमारे श्रोता हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और घर के बाकी सदस्य। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली। अगला संदेश जो आया है ये है सरफुद

अंसारी ने भेजा है। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से शिवा गो प्रेम गो, सनावद वैष्णव कॉलोनी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलावानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। और देर न करते हुए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और कार्यक्रम में बाकी के गीत भी सुनवाने हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम दोनों फिल्म से।

हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफीज़ की आवाज़ में, और साहिर लुधियानवी का ये लिखा ये गीत था जिसे संगीतबद्ध किया था जयदेव ने, और सच में जिंदगी का साथ निभाता चला गया और जिंदगी के बाद भी आज रफ़ी साहब हम सब के साथ हैं। और अब बहुत सारे श्रोताओं के

संदेश पढ़े हैं और फटाफट उनके नाम पढ़ लेते हैं और फिर कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाएंगे पगला कहीं का फिल्म से। फिलहाल असनाव बाजार जिला भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव का ये संदेश है। और सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान का संदेश शामिल हो चुका है। कुरौसी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू, पूनम यादव, कुसुम यादव और इनके माता पिता ने संदेश भेजा है। मोकलपुर मरियाहू जौनपुर से, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने, यहीं से हैं अर्जुन गवनेकर, धीरज सव्वा शेरे और चंचल डोमने, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडुरंग कुंभार, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा और आजमीन गुड़िया, झारखंड से साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी, इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, आतिफ खान, रहमान खान, हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से सुमंत कुमार प्रजापति, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से संदेश आया है। और ये हैं परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से हमारे श्रोता। अगला संदेश आया है गोपालपुर जौनपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी और बाबा यादव रामाश्रय तिवारी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम, प्रियंका, आंचल कुंज, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत धीमान, राजेश, केदार, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा और अतुल शर्मा, नागपुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सदस्य, मोहल्ला फतेहगढ़ से विनोद पुरी और साथी, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, ग्राम जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर, सुरेंद्र और मनोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह, अंश गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, लकी गुप्ता बगाही से इनका संदेश प्राप्त हुआ है। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, मीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविस सिक्का, छिंदवाड़ा बेरडी मध्य प्रदेश से नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस लामसे, जय लामसे, हर्षिता लामसे, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी और इनके परिवार के सदस्य, सिंगार तलाई खंडवा मध्य प्रदेश से राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, शालिनी यादव, कामेश यादव, भारती यादव, पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार,
आमा खोडरा रेखागार कबीर धाम से।

देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्षप्रिया और गीत सरगम नेताम, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, राज पैलेस मोनाद भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, पंकज कुमार, सपना भारती बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, मलियान सरधना से मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब संयम जैन, मुस्कान जैन, जीव्यम जैन, आदि जैन, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली पेबी तुजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर, इनका संदेश पहले भी आ चुका है छत्तीसगढ़ से, दादरी केट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, पुरानी भिलाई चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमुद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अशोक विहार कॉलोनी फेज टू पहाड़िया वाराणसी से इनका संदेश आया है, जसपुर रोड दूल्हापुर मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महमूद, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अल शिफा अंसारी, प्रशांत शिंदे, जयराज शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से ये संदेश आया है, और आनंद प्रसाद श्रीवास्तव, इन्होंने आईएमएस बीएचयू वाराणसी से हमें संदेश भेजा है, कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफसल मलिक, मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता साहनी, बरकाकाना से नाजनीन तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तेखार इब्राहिम, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गुहर, सुनील पाठक, इन्होंने ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से हमें संदेश भेजा है, मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेई बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन और रफी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का आखिरी गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पर फिल्म पगला कहीं का सी।

फातमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नसीर और शाहिद साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर।

तालुका निवासा खुपटी से बंधु लोहार पोपलगढ़, माया शिवांश चंद्रकला पोपलगढ़ और देवीदास पोपलगढ़, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो,

दोस्तों, सच में हम रफ़ी साहब को कभी नहीं भुला पाएंगे और वक्त हो चुका है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन हमारे कुछ श्रोता हैं पंढरपुर सिटी से, कृष्णा घोड़ के प्रशांत, रूशी, यशराज, सुनीता, रोहदास, एसएम जावेद, शगुफ्ता अमजुम गुमला झारखंड से, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्नापासी सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना और अमित खन्ना और उनकी अम्मी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गुन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, गुरु सांधी मिर्जापुर से हैं त्रिलोकी पंडित, अनिल पांडे, राघव पांडे, हर्ष पांडे, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत और मिथिल नचानी, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बाबू भाई और भारती देवी ने जवाहर नगर उदयपुर से संदेश भेजा था, और गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और कयूम शाह, चोचकपुर गाजीपुर से राम सकल चौधरी जी, बुनकर अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान, अमीन खान, अयान खान, नगर पंचायत गंगापुर वाराणसी से, और ये हैं मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जाहिर की। आगे भी ऐसे ही सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम, और अब इजाजत दीजिए अपनी रेडियो दोस्त संजू तिवारी को, नमस्कार। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए
2: जी।
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी
2: जी।
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई
2: जी।
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया।

0: होगा और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
2: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
3: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय

0: पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।

0: लिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। फिर क्या था?
4: ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
1: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: अरे मिनट,
0: कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी,
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ।

0: जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का छठवां संस्करण लेकर आया हूँ।
1: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह तीन भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
2: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
1: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं, जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
2: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
4: लयात्मक प्रस्तुति।
3: शीर्षक है
4: अभी न होगा मेरा अंत।
3: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 241.54 मीटर पर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: आकाशवाणी वाराणसी से अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं शिल्पा बोस। इनके स्वर में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की ये रचना।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं शिल्पा बोस। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं शिल्पा बोस के ही स्वर में ये गीत, रचना नीरज की है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी शिल्पा बोस। मीडियम वेव के मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को, और अब हम लेकर हाजिर हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती। आप सितार पर प्रस्तुत कर रही हैं राग भीम पलासी। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं कुबेर नाथ मिश्र।

0: अभी आप सुन रही थी विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाया राग भीम पलासी। तबले पर आपके साथ संगीत की कुबेरनाथ मिश्र ने। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है। दिन का एक बजने वाला है। अब सुनिए समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 21

0: 82 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना।

গ্রাম পোস্ট খেতাসরাই মখদুসপুর জেলা গয়া বিহার নিবাসী রামেশ্বর মাঝি নে সূচিত কিয়া হ্যা কি উনকে পুত্র বুটানি দিনাঙ্ক 6 মই 2026 সে লাপতা হ্যা। ये ईंट भट्टा सेमरा मेलवी पर काम करते थे और वहीं से लापता है। बालक की उम्र है 6 वर्ष, कद 2 फीट 6 इंच, इकहरा बदन, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये नीले रंग की जीन्स हाफ पैंट और काला टी शर्ट पहना था। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम शिवपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर निवासी सलीम अली ने सूचित किया है कि उनके पुत्र समीर अली दिनांक 27 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, इकहरा बदन, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें गुलाबी रंग की टी शर्ट और काले लोवर में देखा गया था। कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार ग्राम फूलपुर बाजार थाना फूलपुर जिला वाराणसी निवासी बाबा साहब ने सूचित किया है कि उनके पुत्र शनि दयाल जायसवाल दिनांक 3 फरवरी 2024 से लापता है। इनकी उम्र है 36 वर्ष, कद लगभग 5 फुट, रंग गेहुआ, एकहरा बदन और कदकाठी सामान्य है। आखिरी बार इन्हें हल्के सफेद काले रंग के पैंट शर्ट में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। कोई भी व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे और संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और विदुषी सुचरिता गुप्ता के गाए लोकगीत के साथ ही सुनेंगे पारसनाथ मौर्य से राजेश नारायण की बातचीत अनुभव खेती में। विदुषी सुचरिता गुप्ता के गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और देवानंद पर आधारित कार्यक्रम सेनी दर्पण। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें चर्चा और गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी आत्माराम। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। आज का ये कार्यक्रम आधारित होगा पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुति आशुतोष की होगी। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में रसमाधुरी आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रसरंग शाम 7:31 पर। अलावा इसके फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे। आपको पुनः बता दें संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे, संसद समीक्षा सुनिएगा रात 8 बजे। दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और एक ही कलाकार जो आधारित होगा पार्श्व गायक

मोहम्मद रफी पर हम लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर प्रस्तुति होगी आशुतोष की। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र 1:10 पर होने वाले हैं। इलाकाई खबरें सुनिए लखनऊ केंद्र से।

0: के कई अजला में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत के डायरेक्टर जनरल और पुलिस डीजीपी को बलिया पुलिस कांस्टेबल के मुबैना ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि रियासत में अमन अमान बरकरार रखने के बजाय पुलिस स्टेशन मुसलसल तजारती सरगर्मियों में मसरूफ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को सिम्मी का नमस्कार और संध्या जी आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
5: सभी सखियों और सिम्मी को भी संध्या का प्यार भरा नमस्कार।
4: सखियों, उमलते घुमलते बादलों के बीच तेज तीखी धूप तो कभी रिमझिम फुहार भुट्टे की सौंधी सौंधी खुशबू से पता चल जाता है ना कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। और सखियों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ साथ प्रकृति की पूजा का भी है। इस माह में पड़ने वाले पर्व त्योहार धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ हमें प्रकृति से जुड़ने की भी सीख देते हैं।
5: सही कहा आपने। और हमारी प्रकृति भी ना एकदम सखियों को भी झूमने लगती है। और बारिश जो होती है ना, ऐसे में जो पेड़ पौधे हैं इस पे जो हरी हरी कोमल जो पत्तियां

0: होती है ना, ऐसे लगता है जैसे कि आपस में ताली बजा रही हो और कुछ गा रही हैं, और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट भी होती है, मोर भी अपने ही आनंद में है, जो है पंख फैलाए जो है नाचता है। ऐसे में सखियों की मंडली भी जो है ना बन ठगे जो है ना कजरी गाने बैठ जाती है।
1: बे समय हरे भरे रंग बिरंगे पौधे फूल नव जीवन का संचार तो करते ही हैं। साथ ही सखियों, इस माह से पर्व त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे माह भगवान शिव का जलाभिषेक, कांवड़ यात्रा, हर गली हर मंदिर में बम बम भोले की गूंज, सोमवार के व्रत, हरियाली तीज, ये सभी जो पर्व आते हैं ना, मन में नई उमंग और उत्साह भी भर देते हैं। और सखियों, इस समय हमारी धरती तो श्रृंगार करती ही है, हम महिलाएं भी श्रृंगार करके सावन का आनंद लेती हैं।
0: आपने सही कहा।

0: श्रृंगार करके सावन का आनंद लेती हैं।
1: आपने सही कहा, प्रकृति हो या सखियां हो, सभी का जो है ना सावन में श्रृंगार करने का तो बहुत मन करता है। और हमारी सखियां तो खास करके हरी साड़ियां पहनती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, और साथ साथ हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। जैसे लगता है ना कि पूरी ही आनंद
0: हरियाली
1: में आ
0: छा गई
1: हरियाली
0: है।
1: छा गई है।
0: और देखिए ना, इस समय हम सभी के घरों में, या नहीं भी पड़ते हैं कुछ जगह तो घरों में झूले भी पड़ते हैं, और झूला झूलते हुए जब पारंपरिक लोकगीत और कजरी गाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी प्राचीन लोक संस्कृति और लोक परंपरा जीवंत हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा, और ऐसे में पूरा वातावरण जो है ना एकदम आनंदमय हो जाता है, और इतनी खुशहाली हो जाती है ना, लगता है कि कितना झूम
0: हाँ,
1: लिया
0: और भाई सावन का महीना होता ही है हरियाली से खुशहाली का संदेश देने वाला, क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी होती है। इससे चारों तरफ खिली हरियाली से आसपास का वातावरण भी सुखद और खुशहाल हो जाता है ना?
1: हाँ। ये तो सही कहा है, जब बात सावन की हो रही है ना, तो क्यों ना अपनी सखियों को एक गीत सुना देते हैं।
0: तो सखियो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राष्ट्रीय लेखक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज का दिन हिंदी और उर्दू साहित्य में उनके योगदान को सम्मान देने का दिन है।
1: तो सखियों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आत्माराम, वाचन प्रस्तुति आकांक्षा सिंह।
2: वाराणसी के समीप लम्हे गांव में 31 जुलाई सन 1880 को जन्मे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद एक संवेदनशील रचनाकार थे। उनकी कृतियां न सिर्फ कहानियां हैं बल्कि उनमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, जनमानस की भावनाओं, उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। श्रोताओं, आज हम उनकी लिखी कहानी आत्माराम का वाचन आपके लिए करेंगे। बैदो गांव में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वो अपने साहिबान में सुबह से शाम तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता था। ये लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो जान पड़ता कि कोई चीज गायब हो गई है। आत्माराम नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके तीन पुत्र, तीन बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वो भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थीं। तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गंभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता। जो ही यह कला शांत होता, वो अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। इस मंत्र के जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया, तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वो यही तोता। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर आ बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुत गामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव और इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनकी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त।

0: बिल्कुल संजय जी, देखिए ना, रिमझिम गिरता सावन और बारिश की बूंदें हम सभी के मन में उमंग और उत्साह भरी देती है। और सखियो, आज हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती भी है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने 300 के लगभग कहानियां और 14 उपन्यास लिखे हैं।
1: सही। और इनकी कहानियों में गरीबों, किसानों और शोषित वर्ग की पीड़ा को दर्शाया गया। मुंशी जी ने साहित्य का नाम केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज सुधार के उद्देश्य से भी किया है।
0: और इन्होंने लेखन के साथ साथ हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया है। उनकी जयंती को हम सभी

दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वो पिंजड़े को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरु दत्त शिव दत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, लेकिन तोता हाथ न आया, फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठ अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बूढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माता। यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता उड़कर कहीं नहीं जा सकता और न पिंजड़े में ही आ सकता है, फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, रात के भोजन का समय भी निकल गया, पानी की एक बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। तोता ही वह वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाती थी। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर भूखा प्यासा थका मादा रह रहकर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत गुरु दत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी, सहसा कोई आहट पाकर वो चौंक गया। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। उच्च स्वर से बोला, सत गुरु दत्त शिव दत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चला। किंतु जैसे बंदूक की आवाज सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी तरह उसे आते देख वे सब के सब उठकर भागे, कोई इधर कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, अरे ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया कि ये सब तो चोर हैं। वो जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोरों ने भी पीछे फिर कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे कलसा रखा हुआ मिला, मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो उसमें मोहरे थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहरे ही तो थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहरे कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा ही जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। अकस्मात उसे ध्यान आया कि कहीं चोर आए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पंख लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात बीत गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। ये बोल महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में कई बार ये शब्द उसके मुख से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे कि बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से बोल निकलते थे, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था।
ये निर्मल वायु उसे

गुंजारित न कर सकती थी। पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रवाह से झूम उठा वो, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता परों को जोड़े हुए ऊंची डाली से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मर दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु प्रभु, तुम कितने दयावान हो, ये तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विवल हो गई। वो अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा किसी से भेंट न हुई और कुत्ते को महरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वो सीधे पुरोहित जी के घर पहुंचा। पुरोहित जी पूजा पर बैठे सोच रहे थे कि कल ही मुकदमा की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, जजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पलग्गी की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, अरे ये अमंगल मूर्ति कहां से आ पहुंची, अब मालूम नहीं दाना भी मयसर होगा या नहीं। उन्होंने रुष्ट होकर महादेव से पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं इस समय हम पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। उन्होंने पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। बैदू और अन्य निकटवर्ती गांवों में बुलावा गया। कथा के उपरांत भोज का न्योता भी था, जो सुनता आश्चर्य करता, ये आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए, पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितनी आदमियों को दगा दी, कितना खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की कालिख मिटाना चाहते हैं। मैं आप सभी भाइयों से ललकार करता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से एक महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुका लें। गवाही साखी का कोई काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, कई हजारों की बात हो जाएगी। किसी ने ठिठोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी ये जानने की कि इसे इतना धन मिला कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था और तुमने कई माशे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव बोला, हाँ याद है, कितना नुकसान हुआ होगा आपका। पुरोहित जी ने कहा, 50 से कम ना होगा। महादेव ने कमर से दो मोहरे निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। एक घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी ना खड़ा हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए, मैं एक महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। एक महीने तक महादेव लेनदारों

0: की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वो कोई काम न करता, नशा भी छूट चुका था। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आते उनका यथोचित सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैला। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञात हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदो जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं और उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि उसका रत्न जटित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह सत्य गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्धान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में कितनी ही जनश्रुतियां हैं और उनमें सबसे प्रचलित ये कि आत्मा राम के समाधिस्थ होने के बाद वो कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर न आया और उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आत्माराम का वाचन अभी आपने सुना। वाचन स्वर था आकांक्षा सिंह का।
1: सखिया भी सुन रही थी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित आत्माराम।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गोदान पर एक फिल्म का गीत।
3: कि ही आराम में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में

0: सखियो भाई, जब हम मनपसंद गीत सुनते हैं तो मन एकदम तनाव मुक्त हो जाता है, और वैज्ञानिक अध्ययनों से भी ये साबित हो चुका है कि जब हम मनपसंद गीत संगीत सुनते हैं तो वह हमारे लिए दवा की तरह काम करता है। और सखियो, अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति और कहते हैं
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
0: सखियों के जज्बात,
1: गृह लक्ष्मी।
2: बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता। इनके स्वर में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कांवर गीत।

सुगम संगीत लोक संगीत के कार्यक्रम में सुचरिता गुप्ता के स्वर में आपने सुना कांवर गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अभिनी के स्वर में गोधना गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी सुचरिता गुप्ता के गाए लोकगीत। इनके गाए लोकगीत आप शाम को 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद मिड डे न्यूज। The headlines. Lok Sabha passes the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. Both Houses of Parliament adjourn for the day amid opposition uproar over several issues.

0: रही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही

इस समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी

0: करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
1: सदन में जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से

0: हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुति आशुतोष की।

0: फिल्मी दुनिया के अजीमो शान शाहकार, अपने फन के माहिर फनकार, जिनकी करते हैं हम बातें हर बार। पेश है प्रोग्राम एक ही कलाकार।
1: एक ही कलाकार कार्यक्रम

श्रोताओं, आज हैं फिल्म संगीत जगत के तानसेन, सुरों के शहंशाह, आवाज के जादूगर, मौसिकी के पैगंबर पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि।

0: कहते हैं कि जब रफी बाहर होते हैं तो आप अपने भीतर होते हैं। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई पीतल की थाली रखी हो और ऊपर से गिरते फलों से लगातार बजती रही हो, मोहम्मद रफी की आवाज ऐसे ही बजती रही है हमारे दिलों में। लोकगीत की सरलता, सूफियाना सादगी, भजन की विनम्रता, गजल की तहजीब, सैनिकों के जोश, प्रेम की नमी और उदासी के आंसू लिए रफी की आवाज आज भी हमारे साथ साथ चलती हुई पहुंचती है दफ्तर, करती है पुताई, गूंथती है आटा, हल करती है सवाल, ढोती है बोझा और चलाती है दुकान। सरल, सहज, दोस्तों के दोस्त और सुरों के शहंशाह रफी साहब के सुरों में जो ठहराव, जो गहराई है, वो निश्चित ही उन्हें अलग करती है।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

ये एक ऐसी आवाज है जो दुनिया के किसी ना किसी कोने में हमेशा गूंजती रहती है। ये बात सच है कि रफी की आवाज सिर्फ तैयार आवाज नहीं थी, साथ में प्रकृति का वरदान भी था, और हर वरदान अपने पीछे तपस्या का एक इतिहास छोड़ता है। मोहम्मद रफी की तपस्या तो सबको पता ही है, लेकिन आज जब उनको गए 46 साल हो गए, रफी के कुछ खास गीतों को हम जितनी बार सुनते हैं, अपने अंदर अरार की तरह ये हर बार कुछ टूटता सा महसूस होता है। ऐसा सिर्फ कुछ के साथ होता है, ऐसी बात नहीं है। रफी की आवाज में जो शालीनता थी, वो आज के दौर में कठिन तो है। वह आवाज चिल्लाती नहीं थी, गिड़गिड़ाती नहीं थी, वह बस गीत के मर्म से लिपटकर धुन के साथ आगे बढ़ती थी। ठीक उसी तरह जैसे कोई माँ बच्चे को लोरी सुनाए, या जैसे पुरानी हवेली में बसी दीवारें अपनी कहानियां फुसफुसाएं। इसलिए रफी रहेंगे हमारी आंख।

मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई। जब मोहम्मद रफी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफी का वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफी जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज रफी को पसंद आई और रफी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे। लेकिन इससे रफी को स्थानीय ख्याति के अलावा और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति रुचि को देखा तो उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खां के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार आकाशवाणी लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। इसको सुनने हेतु मोहम्मद रफी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। सामने दर्शक दीर्घा में श्याम सुंदर जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे उन्होंने भी रफी को सुना और काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफी का पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुलबलोच के लिए था जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में वर्ष 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफी ने बंबई आने का फैसला किया और उन्हें संगीतकार नौशाद ने अपने फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा से रफी को पहली बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। इसके बाद शहीद, मेला और दुलारी में भी रफी ने गाने गाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1951 में फिल्म आती है बैजू बावरा और इसके गाने बनाए नौशाद साहब ने। बैजू बावरा के गानों ने मोहम्मद रफी को मुख्य धारा के गायक के रूप में स्थापित किया।

लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को भी उनकी आवाज पसंद आई और उन्होंने भी रफी से गाने गवाना शुरू कर दिया। इसके बाद सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर, रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलिल चौधरी जैसे सभी संगीतकारों ने मोहम्मद रफी से गाने गवाए और मोहम्मद रफी इन सभी के पसंदीदा गायक बन गए। श्रोताओं, वर्ष 1960 में फिल्म चौदहवीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

वर्ष 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आई फिल्म दोस्ती के इस गाने के लिए रफी साहब को उनका तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और वर्ष 1965 में ही भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

वर्ष 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत परदेसियों से ना अखियां मिलाना लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंच गया था। 1966 में फिल्म सूरज के गीत के लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

और वर्ष 1968 में शंकर जयकिशन के ही संगीत निर्देशन में बनी फिल्म ब्रह्मचारी के इस शानदार गीत के लिए मोहम्मद रफी को उनका पांचवा फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, फिल्म जगत में मोहम्मद रफी को एक ऐसे गायक के रूप में याद किया जाता है जो अपने अभिनेता के हिसाब से अपना अंदाज बदल देते थे। आइए आपको इसकी एक बानगी सुनवाते हैं। आप उनके गाने के अंदाज को निश्चित रूप से समझ लेंगे कि वह गीत इस अभिनेता के ऊपर ही

0: शम्मी कपूर।
1: चाहे कोई मुझे

तो श्रोताओं, देखा आपने कि किस तरह से मोहम्मद रफी का अपने अभिनेता के अनुसार अंदाज बदल जाता है और यही चीज मोहम्मद रफी को मोहम्मद रफी बनाती है।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ गीत नहीं गाए बल्कि भावनाओं को आवाज़ दी। स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी और सुरों की सरस्वती लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा की दो ऐसी महान आवाज़ें हैं जिन्होंने संगीत को अमर बना दिया। उनकी जादुई जुगलबंदी ने बॉलीवुड के स्वर्णिम युग को अनगिनत सदाबहार नगमे दिए जो आज भी दिलों में उसी ताजगी के साथ गूंजते हैं। रफ़ी साहब की भावपूर्ण और बहुरंगी आवाज़ जब लता दीदी के मधुर निर्मल स्वरों से मिलते थे तो प्रेम, भक्ति, खुशी और संवेदनाओं का एक अद्भुत संसार रच जाता था। संगीत बदलता रहेगा, दौर बदलते रहेंगे, लेकिन रफ़ी के सुर हमेशा अमर रहेंगे। और अब आते हैं 31 जुलाई 1980 के उस दिन जिसे याद करते ही आज भी करोड़ों चाहने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। इसी दिन सुरों के बादशाह, करोड़ों दिलों की धड़कन रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहते हैं कि उस दिन मुंबई में तेज बारिश हुई। उनकी अंतिम यात्रा में उड़ा जनसैलाब मानो ये गवाही दे रहा था कि कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज विदा हो रही है जो सदियों तक जिंदा रहने वाली है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान भी अपने सबसे प्यारे फनकार को विदाई देते हुए रो पड़ा हो। रफ़ी साहब ने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि हर एहसास को अपनी आवाज दी। 31 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस अमर आवाज को याद करने का दिन है जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संगीत का अनमोल खजाना दिया। आज उनके यौमे वफात पर हम उन्हें अपनी खिराजे अकीदत पेश करते हैं। और अब इसी के साथ अपने रेडियो मित्र आशुतोष को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रस्तुति थी आशुतोष की। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:03 हो रहे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। शाम पांच बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म आखिर क्यों से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार है इंदिवर और संगीत है राजेश रोशन का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कानून और मुजरिम से। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और उषा मंगेशकर की, गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीत है सी अर्जुन का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म शगुन से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत है खयाम का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:15 होने वाले हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: एक दौर था जब मनोरंजन के लिए न मोबाइल था, न ओटीटी, न सोशल मीडिया की अनगिनत रीलें। तब कुछ आवाज़ें थी, कुछ किस्से थे और कुछ किताबें थी जो लोगों के दिलों तक पहुंचती थी।
1: रेडियो पर गूंजती थी आवाज़ें, चौपालों में सुनाई जाने वाली कहानियाँ और उपन्यासों के वे पन्ने जिनके हर शब्द का लोग बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे।
0: लेकिन जरा सोचिए, उस दौर में जब एक लेखक ऐसा भी था जिसकी कहानी पढ़ते पढ़ते लोग अपने ही जीवन से रूबरू हो जाते थे। लगता था जैसे किताब का हर पात्र पड़ोस का कोई इंसान हो, हर घटना अपने ही गांव की हो और हर दर्द अपना सा लगे।
1: आखिर कौन था वह लेखक जिसने बिना किसी मंच, बिना किसी कैमरे और बिना किसी तकनीक के सिर्फ अपनी कलम के दम पर करोड़ों दिलों में जगह बना ली?
0: आज के इसी विशेष अवसर पर मिलते हैं उस महान साहित्यकार से। लेकिन आज के कार्यक्रम की गाड़ी आपके जिन दो साथियों के हाथ है उनको भी तो जान लीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव।
1: और मैं हूं भास्कर। स्वीकार कीजिए हमारा प्यारा भरा नमस्कार।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है।

0: तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
0: ओ
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ
3: 0542227658।
4: हाँ जी, तो भास्कर जैसा कि हम बात कर रहे थे, कभी सोचा है अगर किसी इंसान के हाथ में तलवार ना हो, कोई सेना ना हो, कोई राजपाट ना हो, फिर भी वह समाज में क्रांति ला दे, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी?
5: उसकी कलम सौरभ, क्योंकि शब्दों की ताकत अक्सर तलवार से भी बड़ी होती है। और जब कोई लेखक अपनी कलम को समाज के सबसे कमजोर, सबसे उपेक्षित और सबसे बेबस लोगों की आवाज बना दे, तब इतिहास उसे सिर्फ साहित्यकार नहीं बल्कि कलम का सिपाही कहता है।
4: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदी और उर्दू साहित्य के उस महान रचनाकार की, जिनकी कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो हमारे आसपास के लोग ही किताब के पात्र बन गए हों। किसानों की पीड़ा, मजदूरों का संघर्ष, स्त्रियों की व्यथा, गरीबी, अन्याय और इंसानियत, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसे उनकी लेखनी ने न छुआ हो। आज है मुंशी प्रेमचंद जयंती, उस साहित्य सम्राट को याद करने का दिन जिनकी रचनाएं समय के साथ पुरानी नहीं हुई बल्कि और भी प्रासंगिक होती चली गई।
5: मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के लम्ही गांव में हुआ था। आज भी अगर आप लम्ही जाएं तो वहां की गलियां, खेत खलिहान और ग्रामीण परिवेश आपको उनकी कहानियों की याद दिला देंगे। यही वह मिट्टी थी जिसने प्रेमचंद को संवेदनशील बनाया। लम्ही अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि साहित्य प्रेमियों के लिए एक तीर्थ जैसा स्थान माना जाता है। हर साल देश भर से लेखक, शोधार्थी और पाठक वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
4: दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत नवाब राय से की थी, लेकिन जब अंग्रेज सरकार ने उनकी देशभक्ति से प्रेरित पुस्तक सोज ए वतन पर प्रतिबंध लगा दिया, तब उन्होंने नया नाम अपनाया प्रेमचंद। शायद अंग्रेजी उनकी किताबें जब्त कर सकते थे लेकिन उनके विचारों को कभी नहीं रोक पाए।
5: और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने साहित्य को समाज का आईना बना दिया। प्रेमचंद ने कभी महलों की चमक नहीं लिखी बल्कि झोपड़ियों का अंधेरा लिखा। उन्होंने उन लोगों की कहानी लिखी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। शायद यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और कलम का सिपाही भी। उनकी लेखनी ने अन्याय के खिलाफ बिना शोर किए ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
4: दोस्तों अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे हर कहानी समाज का एक नया आईना लेकर आती है। ईदगाह का छोटा सा हामिद हमें त्याग और प्रेम का अर्थ सिखाता है। फूस की रात का हल्कू किसान की मजबूरी दिखाता है। दो बैलों की कथा इंसानों से ज्यादा संवेदनशील पशुओं का चित्र खींचता है। नमक का दरोगा ईमानदारी का संदेश देता है तो कफन समाज की कठोर सच्चाइयों से हमें रूबरू कराती है। यही तो प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत थी, वे साधारण घटनाओं में भी असाधारण अर्थ खोज लेते थे।
5: और उनके उपन्यासों का संसार भी उतना ही विशाल है। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और विशेष रूप से गोदान, जिन्हें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। गोदान का होरी केवल एक किसान नहीं बल्कि उस दौर के लाखों किसानों का प्रतिनिधि बन गया था, जिसके सपने परिस्थितियों के बोझ तले दब जाते हैं।
4: बिल्कुल भास्कर, एक उपन्यास का नाम अक्सर चर्चा में कम आता है, वो है मंगलसूत्र। लेकिन इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और अधूरा उपन्यास है। वर्ष 1936 में उनके निधन के कारण यह पूरा नहीं हो पाया। फिर भी जितना लिखा गया उसमें बदलते सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक रिश्तों और स्त्री पुरुष संबंधों पर उनकी गहरी सोच

0: साफ दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन के अंतिम दिनों तक भी उनकी कलम समाज की धड़कनों को सुन रही थी।
1: और अगर वाराणसी से उनके रिश्ते की बात करें तो यह रिश्ता सिर्फ जन्मस्थान का नहीं बल्कि आत्मा का था। बनारस की गंगा जमुना तहजीब, गांवों की सादगी, किसानों का जीवन, लोकभाषा की मिठास और आम लोगों की रोज़मर्रा की जद्दोजहद, इन सब ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और साहित्य को गढ़ा। उनकी कहानियों में बनारस सीधे सीधे भले हर बार न दिखे लेकिन उनकी आत्मा हर पन्ने पर महसूस होती है। यही वजह है कि वाराणसी आज भी उन्हें अपना सबसे गौरवशाली साहित्यिक पुत्र मानता है।
0: बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात, प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य वही है जो हमें जगाए, सुलाए नहीं। इसलिए उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, वे सवाल पूछती थी, सोचने पर मजबूर करती थी और दोस्तों पता है, और समाज के बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती थी। शायद यही कारण कि आज भी स्कूलों में स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक उनकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं और नई पीढ़ी उनसे जीवन के मूल्य भी सीखती हैं।
1: सच कहा, समय बदल गया, तकनीक बदल गई, जीवन शैली भी बदल गई, लेकिन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र आज भी हमारे आसपास दिखाई दे जाते हैं। कहीं होरी है, कहीं हामिद है, कहीं निर्मला है, तो कहीं घीसू और माधव। यही किसी महान लेखक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी रचनाएं समय की सीमाओं से परे जाकर हर पीढ़ी की कहानी बन जाए।
0: तो आइए मुंशी प्रेमचंद जयंती पर हम सिर्फ उन्हें याद ही ना करें बल्कि उनकी किसी एक कहानी या उपन्यास को पढ़ने का संकल्प भी लें, क्योंकि किताबें केवल ज्ञान नहीं देती, वे इंसान को बेहतर इंसान भी बनाती है। कलम के उस सच्चे सिपाही, समाज के संवेदनशील चित्रकार और हिंदी उर्दू साहित्य के अमर नक्षत्र मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन।
1: दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की बातें यहीं विराम लेती हैं लेकिन उनकी एक बात बार बार याद आती है कि इंसान की असली ताकत उसके विचार और उसका ज्ञान होता है। ज्ञान जो केवल डिग्री से नहीं मिलता बल्कि सीखते रहने की आदत से मिलता है, और शायद यही वह बिंदु है जहां से आज की हमारी अगली चर्चा शुरू होती है। सेल्फ स्टडी यानी आत्म अध्ययन। सौरभ, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर किसी युवा के पास सबसे बड़ी ताकत है तो वह है खुद से सीखने की क्षमता, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आज नया है वह कल पुराना हो जाएगा। ऐसे में अगर हम सिर्फ स्कूल, कॉलेज या कोचिंग पर निर्भर रहेंगे तो शायद समय से पीछे छूट जाएं।
0: बिल्कुल। पहले कहा जाता था कि पढ़ाई खत्म, नौकरी शुरू, लेकिन आज सच इसके बिल्कुल उलट है। आज नौकरी मिलने के बाद भी पढ़ाई खत्म नहीं होती। नई तकनीकें, नई स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टूल्स, नई भाषाएं, हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है। इसलिए अब सफल वही होगा जो हर दिन खुद को अपडेट करता रहेगा।
1: और सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ किताबें खुलकर घंटों बैठ जाना नहीं है, इसका मतलब है सीखने की जिम्मेदारी खुद लेना। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसका जवाब ढूंढना, अगर किसी विषय में कमजोर हो तो उसे स्वीकार करके उस पर काम करना, अगर कोई नई स्किल सीखनी है तो उसके लिए इंतजार न करना कि कोई आकर हमें सिखाएगा।
0: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि युवाओं के पास संसाधन नहीं है, समस्या यह है कि संसाधन इतने ज्यादा हैं कि ध्यान भटक जाता है। एक तरफ किताब खुली होती है, दूसरी तरफ मोबाइल पर नोटिफिकेशन, 5 मिनट पढ़ाई और फिर आधा घंटा सोशल मीडिया। ऐसे में सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा साथी है अनुशासन।
1: सही कहा। और एक बात मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटे भी पूरी ईमानदारी से सेल्फ स्टडी करते हैं तो साल भर में लगभग 335 घंटे का अतिरिक्त ज्ञान आपके पास जरूर होगा। सोचिए, यह समय किसी भी इंसान को औसत से बेहतर बनाने के लिए काफी है।
0: लेकिन भास्कर, कई युवा कहते हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, किताब लेकर बैठते हैं और कुछ देर बाद बोरियत होने लगती है।
1: ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक भी तो है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दिमाग का नहीं आदत का भी खेल है। जैसे रोज व्यायाम करने से शरीर धीरे धीरे मजबूत होता है, वैसे ही रोज पढ़ने से मन पढ़ा

0: में लगने लगता है। शुरुआत छोटे लक्ष्य से कीजिए। आज सिर्फ 20 मिनट पढ़िए, फिर 30, फिर 45 और धीरे धीरे 1 घंटे। आदत अपने आप बन जाएगी।
1: और एक ज़रूरी बात, सेल्फ स्टडी का मतलब अकेले पढ़ना नहीं होता है, इसका मतलब है अपनी सीखने की जिम्मेदारी खुद लेना। आप किताब पढ़िए, ऑडियो बुक सुनिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, किसी भी विशेषज्ञ का व्याख्यान देखिए, नोट्स बनाइए, दोस्तों के साथ चर्चाएं कीजिए। सीखने का माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा आपकी अपनी होनी चाहिए।
0: सही कहा। आज तो इंटरनेट ने भी पूरी दुनिया को एक खुली लाइब्रेरी बना दिया है। देश विदेश के विश्वविद्यालयों के लेक्चर, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च पेपर, ऑनलाइन कोर्स, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन याद रखिए, इंटरनेट आपको जानकारी दे सकता है, ज्ञान नहीं। जानकारी को ज्ञान में बदलने का काम आपकी सेल्फ स्टडी करती है।
1: और शायद यही वजह है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, या फिर कोई भी महान नेता, उन सभी में एक बात समान थी, वे जीवन भर विद्यार्थी बने रहे, उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया।
0: बिल्कुल सही कहा। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। इसलिए उम्र चाहे 18 साल हो या 28 या 58, सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती।
1: तो दोस्तों, आज का संकल्प यही हो कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे और कल से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी बाहर नहीं, हमारे अपने अध्ययन कक्ष से शुरू होती है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार और दिल है बेकरार, क्योंकि फिर सजने जा रहा है सीने दर्पण का खूबसूरत संसार। तो तैयार हो जाइए यादों की उस सुनहरी रील के साथ सफर पर निकलने के लिए, जहां हर फ्रेम में है एक कहानी, एक धुन में है एक एहसास और हर चेहरे के पीछे छिपे हैं अनगिनत अनसुने किस्से। तो आइए रोशनी, कैमरा और सिनेमा के जादू के साथ शुरू करते हैं आपका पसंदीदा फिल्मी सफर सीने दर्पण।
1: दोस्तों, कहते हैं कि हर दौर का अपना एक सुपरस्टार होता है। कोई अपनी दमदार आवाज से याद किया जाता है, कोई अपने अभिनय से और कोई अपने व्यक्तित्व से। लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा भी नाम है जिसने अपने अभिनय से ज्यादा अपने जीने के अंदाज से लोगों का दिल जीता है।
0: सोचिए, एक ऐसा अभिनेता जिसकी मुस्कान आज भी नई लगती है, जिसकी चाल की नकल आज भी लोग करते हैं, जिनके बाल का स्टाइल एक जमाने में युवाओं की पहली पसंद हुआ करता था, और जिसके चेहरे पर उम्र का असर मानो कभी दिखाई ही नहीं दिया। आज भी जब उनके गीत रेडियो पर बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुनहरा दौर फिर से लौट आया हो। दोस्तों, आज सीने दर्पण में हम बात करेंगे उस सदाबहार अभिनेता देवानंद की।
1: आज के दौर में कलाकारों की लोकप्रियता सोशल मीडिया से मापी जाती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब किसी अभिनेता की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जाता था कि लोग उनकी तरह कपड़े पहनने लगे, उसके जैसा हेयर स्टाइल रखने लगे और उसकी तरह बात करने की कोशिश करने लगे।
2: कुछ विद्वान में मदद कीजिएगा,
3: यहाँ औरतों का सामान मिलता है, मतलब
2: जी इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक खास महिला है जिनके लिए खास साड़ी चाहिए और कुछ खास चूड़ियाँ, सब स्वदेशी माल है।
3: कौन सी साड़ी चाहिए?
2: आपकी पसंद में और हमारी उन खास महिला की पसंद में रत्ती भर कभी फर्क नहीं हो सकता। आपको कौन सा रंग पसंद है?
3: वो नीली साड़ी अच्छी है।
2: और चूड़ियाँ?
3: मैच करती हुई नीले में जरा सा ऑरेंज और हरा अच्छा लगेगा। सरला, वो चूड़ियाँ लाना, साइज क्या है?
2: आप अपने ही साइज की दे दें तो पूरी आ जाएंगे,
3: और साथ में अपने साइज की सैंडल भी दिलवाऊं आपको। पूरी 2 इंच की लंबी हील है उस पर, एक सेकंड में दिमाग दुरुस्त हो जाएगा।
2: आपने हमारी आइसक्रीम नहीं खाई, हमें हमेशा दुख रहेगा इस बात का।
1: देवानंद उस गिने चुने कलाकारों में थे जिनकी मुस्कान, चाल और अंदाज सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहे बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है, और देवानंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
0: 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के शंकरगढ़ में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो जाएगा। उनका असली नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। उनके पिता पिशोरीमल आनंद एक प्रतिष्ठित वकील थे, और परिवार चाहता था कि बेटा भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही निकाला। बचपन से ही उन्हें संगीत, साहित्य और अभिनय में गहरी रुचि थी। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। यही साहित्यिक पृष्ठभूमि आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और संवाद अदायगी में

0: साफ दिखाई दी।
1: लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मंजिल आसान नहीं थी। आज भी मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन उस दौर में यह शहर सपनों से ज्यादा संघर्ष देता था। देवानंद की भी एक सूटकेस, कुछ कपड़े और अनगिनत सपने लेकर मुंबई पहुंचे थे। यहाँ न कोई रिश्तेदार था, न कोई फिल्मी पहचान और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्टूडियो तक ले जाए।
2: बिल्कुल, जीवन चलाने के लिए उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में नौकरी की। उस समय उनकी मासिक तनख्वाह थी लगभग 160 रुपए। दिन भर नौकरी और शाम को स्टूडियो के चक्कर। कई बार ऑडिशन दिए, कई बार रिजेक्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। देवानंद कहा करते थे कि आज सपनों पर विश्वास हो तो असफलता भी रास्ता बदल देती है, मंजिल नहीं।
1: कहते हैं किस्मत मेहनत करने वालों का साथ जरूर देती है, और देवानंद की मेहनत भी रंग लाई। साल 1946 में उन्हें पहली फिल्म मिली जिसका नाम था हम एक हैं। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट तो नहीं रही, लेकिन इनके फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनकी ओर जरूर खींचा, और फिर आया वह मौका जिसने उनकी जिंदगी बदल दी।
2: साल 1948, फिल्म थी जिद्दी। इस फिल्म में उनके साथ थी प्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कौशल। फिल्म सफल रही और देव आनंद रातों रात दर्शकों के चहेते बन गए। उनके चेहरे की मासूमियत, आंखों की चमक और संवाद बोलने का अनोखा अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि हिंदी सिनेमा को अपना नया रोमांटिक हीरो मिल चुका था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: सौरभ, जब भी देवानंद की बात होती है तो एक नाम अपने आप जुड़ जाता है, सुरैया। या सिर्फ दो कलाकारों की कहानी नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और अधूरी प्रेम कहानियों में से एक है।
2: बिल्कुल, उस दौर में सुरैया अपने समय की सबसे बड़ी अभिनेत्री और गायिका थी। जब देवानंद उनके साथ फिल्म विद्या की शूटिंग कर रहे थे, तब एक दृश्य में नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। कहा जाता है कि उस समय देवानंद ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुरैया को डूबने से बचाया। शायद वहीं से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने साथ ही कई सफल फिल्में की और दर्शकों ने उनकी जोड़ी बेहद पसंद आने लगी।
1: इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि देवानंद ने सुरैया को लगभग 3,000 रुपए की हीरो की अंगूठी देकर विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस समय 3,000 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन अफसोस, प्यार की राह में सबसे बड़ी दीवार बन गया परिवार। सुरैया की नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। धर्म और समाज की बंदिशों के कारण दोनों कभी एक नहीं हो सके। यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन इसकी कसक दोनों की जिंदगी में हमेशा बनी रही।
2: कहा जाता है कि सुरैया ने फिर कभी शादी नहीं की। वहीं देवानंद ने बाद में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह किया, लेकिन उन्होंने भी कभी सुरैया के प्रति अपमानजनक या फिर कटु शब्द नहीं कहे। शायद यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सम्मान कभी नहीं टूटना चाहिए।
1: दोस्तों, संघर्ष से सफलता तक और फिर अधूरी मोहब्बत तक, देवानंद की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। कैसे बनी नवकेतन फिल्म्स, कैसे बनी जन्मी गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम जैसी कालजयी फिल्में, और आखिर क्यों देवानंद को आज भी हिंदी सिनेमा का सबसे स्टाइलिश अभिनेता माना जाता है।
2: दोस्तों, देवानंद सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और मुस्कुराहट के साथ जीने की एक सोच थी। उन्होंने अपने अभिनय, अपने अंदाज और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादगार पल दिए। आज सीने दर्पण से विदा लेने से पहले आइए सुनते हैं देव आनंद पर फिल्माया गया वह सदाबहार गीत, जो उनकी जिंदगी के दर्शन को भी बखूबी बयां करता है।
3: न जाने कितनी यादें इनका पीछा करती होंगी, और इनकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। डैडी, इसी ख्याल पर शालू ने एक नज़्म लिखी है, वो सुनिए।
4: सुनाओ बेटी।

0: तो भास्कर, कहते हैं कि सही समय पर बोला गया एक सही शब्द कई बार पूरी बात का अर्थ बदल देता है। इसलिए आज भी हम लेकर आए हैं दो ऐसे शब्द जो आपकी भाषा को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, शुरुआत करते हैं आज के हिंदी शब्द से, और आज का हमारा हिंदी का शब्द है अधिदेश।
0: अधिदेश का अर्थ है किसी व्यक्ति, संस्था या फिर सरकार को दिया गया औपचारिक अधिकार, आदेश या फिर जन समर्थन। इसे अंग्रेजी में मैंडेट भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका एक उदाहरण सुनिए। चुनाव में मिली भारी जीत को सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का अधिदेश माना।
1: इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जनादेश, आदेश, प्राधिकार और अधिकार पत्र। वहीं विलोम के रूप में अस्वीकृत, निषेध या प्रतिबंध जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं।
0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के अंग्रेजी शब्द की ओर। तो आज का अंग्रेजी शब्द है एग्जैजरबेरेट। इसका स्पेलिंग है EXACERBATE।
1: एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी समस्या, बीमारी या कठिन परिस्थिति को और अधिक गंभीर या बदतर बना देना।
0: अब इसका उदाहरण देखिए। द लैक ऑफ

0: Sleep can exacerbate stress and reduce concentration. तो आज के ये दो शब्द अधिदेश और एग्जैजरबेरेट अपनी बातचीत और लेखन में ज़रूर शामिल कीजिए। शब्द जितने समृद्ध होंगे आपकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही प्रभावशाली होगी। और हाँ, याद आया, प्रभावशाली तो आप रोज़ाना अपने पसंदीदा क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब देकर भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है दिमाग का असली गेम, जहां आपकी एक सही सोच और एक सही जवाब दिलाएगा आपको एक खास पहचान।
0: जी हाँ, और ये कोई साधारण सवाल नहीं होता है, बल्कि आपके ज्ञान और जागरूकता की छोटी सी परीक्षा होती है। हाँ हाँ भाई, आप सभी का पसंदीदा क्वेश्चन ऑफ द डे में।
1: लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले जोरदार तालियां हो जाए उन साथियों के लिए जिन्होंने कल के सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देकर अपनी शानदार पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कल के सवाल पर। तो कल का प्रश्न था, आजाद शत्रु नाटक के रचयिता कौन थे, जिसका उत्तर है जय शंकर प्रसाद। और सही जवाब देने वाले साथियों के नाम हैं, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा वसंतीबाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से चंदा चंदौली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से।
1: आप सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाइयाँ। आपकी यही लगन और ज्ञान आपको हर दिन नई पहचान दिलाता रहे।
0: तो अब बारी है आज की चुनौती की, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सवाल भी उतना ही दिलचस्प है।
1: ध्यान से सुनिएगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्रेमचंद द्वारा चलाए गए प्रेस का क्या नाम था?
0: दोस्तों सवाल एक बार फिर से आपको बता दूं कि प्रेमचंद द्वारा चलाए गए प्रेस का क्या नाम है। तो दोस्तों अब देर मत कीजिए, अपना जवाब हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youthAIR वाराणसी या फिर हमारा ईमेल पता youthAIRVNS@gmail.com पर भेज दीजिए।
1: क्या पता अगली बार जब हम विजेताओं के नाम लें तो उनमें आपका नाम भी शामिल हो, इसलिए जल्दी कीजिए, जवाब भेजिए और बन जाइए हमारे अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर।
0: बिल्कुल, वैसे भास्कर कहते हैं कि जो अपने इतिहास को समझता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्या इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का संग्रह है?
1: बिल्कुल नहीं। इतिहास हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और महान व्यक्तित्वों के संघर्षों से परिचित कराता है। यह केवल अतीत नहीं बताता बल्कि वर्तमान को समझाने और भविष्य के लिए सही दिशा चुनने की प्रेरणा भी देता है।
0: तो आइए नजर डालते हैं 31 जुलाई के इतिहास पर और जानते हैं कि आज के दिन किन महत्वपूर्ण घटनाओं ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई।
1: तो दोस्तों हर वर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और प्रकृति संसाधनों की रक्षा करने वाले रेंजर्स के योगदान को सम्मान देना तथा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रेंजर्स को श्रद्धांजलि देना है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों राष्ट्रीय एवोकाडो दिवस नेशनल एवोकाडो डे मुख्यतः अमेरिका में मनाया जाता है, जो कि आज ही के दिन मनाया जाता है।
1: और 2012 में माइकल फिलिप्स ने अपना 19वां ओलंपिक पदक जीतकर उस समय ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया था।
0: और साहित्य प्रेमी कृपया ध्यान दें, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका जेके रॉलिंग का जन्म आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई सन 1965 को हुआ था।
1: दोस्तों हम जानते हैं कि आप में से कुछ ऐसे युवा भी हैं जो रोजगार के लिए प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं कि हम उन्हें बताएंगे कि रोजगार से जुड़ी कुछ सूचनाएं।
0: तो दोस्तों हम आपको

0: बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती 119 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। RRB आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इनकी आधिकारिक वेबसाइट rrb.gov.in पर।
0: वैसे भास्कर, एक सवाल पूछूं?
1: पूछो।
0: अगर किसी के पास डिग्री हो लेकिन काम करने का हुनर ना हो, और दूसरी तरफ किसी के पास हुनर हो लेकिन बड़ी डिग्री ना हो, तो आज के समय में ज़्यादा आगे कौन बढ़ सकता है?
1: बहुत दिलचस्प सवाल है गौरव, और इसका सही जवाब है आज के दौर में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल यानी हुनर भी उतना ही जरूरी है। यही सोच लेकर शुरू हुआ था स्किल इंडिया मिशन।
0: दोस्तों, बदलते समय के साथ नौकरी का स्वरूप भी बदल रहा है। आज कंपनियां केवल यह नहीं देखती कि आपने क्या पढ़ा है, बल्कि यह भी जानना चाहती है कि आप क्या कर सकते हैं, यानी आपके पास कौन सी दक्षता या फिर स्किल है।
1: बिल्कुल सही कहा। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ केवल तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्तित्व विकास, टीम वर्क और इंटरव्यू स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि युवा नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो दोस्तों, कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ मैं था सौरभ।
1: और मैं भास्कर।
0: दीजिए हमें इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार।

0: आचार्य के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भइल कैबिनेट बैठक में 5,070 करोड़ रुपया का प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY के मंजूरी दे दिया गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में भइल फैसलन के बारे में जानकारी देना है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है।
0: कैबिनेट पीएम किसान योजना के 2030-31 लिए जारी रखरखाव के मंजूरी दे रहे दरस। बैठकी में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के अवधि बदे कुल 36,441 करोड़ रुपया के बजट के साथ ही खेलो इंडिया योजना के विस्तार, राष्ट्रीय खेल महासंघ के दिहल जाए वाले सहायतों में बढ़ोतरी के मंजूरी दिया गई। लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गयी। यह विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कई हो,
2: जिसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2000

0: इसकी तैयारियों को समीक्षा कई है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि 150 केवल व्यापार प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाने वाला वैश्विक मंच है। उन्होंने निर्देश दिए कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो का देश विदेश में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, उद्यमियों एवं आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्यमी मित्रों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्थानीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता हो। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल को 172वां बैठक भेल। इस मौका पर वहां के मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने को निर्देश देने ताकि ढेर से ढेर पात्र विद्यार्थियों के एक लाभ मिल सके। आज महान कथाकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को जयंती मनावल जा रहा हो। इस मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस क्रम में उनके पुस्तैनी गांव लमही के मुंशी प्रेमचंद स्मारक पर आज लमही महोत्सव 2026 को आयोजन कैल गई। इस मौका पर हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देवे वाले कई गो साहित्यकार के सम्मानित कैल गए। कार्यक्रम में वक्ता लोग मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व आकृतित्व के बारे में चर्चा कैले। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदन पर सीधी भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा का नतीजा घोषित कर दे ले हो।
2: अभ्यर्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर अपना परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं उन्हें बेने कुछ जगह पर बरखा गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे किसान पारसनाथ मौर्या से खेती में उनके अनुभवों को और साथ में विदुषी सुचरिता गुप्ता का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे संसद समीक्षा जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम अंजुमन। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगी विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे वायलिन वादन। कलाकार होंगे पंडित डी के दातार। और कल दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगी पद्मा तलवरकर। कल रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। और कल रात्रि 9:30 पर सुनिएगा अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती को। कल रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कल सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 पर और कल दोपहर 1:45 पर। कलाकार होंगे राम नारायण मौर्या और साथी। कल दिन में 11 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर, कलाकार होंगी स्मृति शुक्ला। कल दोपहर 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया में, स्तनपान का महत्व, तकनीक और पोषण, इस विषय पर डॉक्टर रुचि सिंह से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। कल दोपहर 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीतांजलि और कल शाम 5 बजे से बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। कल शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी में, फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन। कल शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे किसान वाणी के अंतर्गत खरीब में हरे चारे की खेती, इस विषय पर डॉक्टर निखिल कुमार सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत और साथ में राम नारायण मौर्य और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। कल शाम 7:31 पर हिंदी वार्ता कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता भारतेंदु कालीन कविता, वार्ताकार होंगे प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म एक जिंदगी अरमान भरी से। आवाज है शैलेंद्र सिंह की, गीतकार है नौरंग भारती और संगीत है संदीप चक्रवर्ती का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो राम
1: राम
0: राम। राम राम हो नंदू भैया।
1: राम राम गुंजा बहन।
0: अब बड़ा दिन बाद भेटैला है हो। तब यही बात पे बताए दा कि भाई तोहरे खेती किसानी का कहाँ हाल हो।
1: खेती किसानी का हाल का कहल जाए गुंजा बहन। देखा हौ का कि ई खेती किसानी देखल जाए ना तो बड़ा मेहनत बड़ा परिश्रम मांगेला।
0: हाँ भाई बात तो ठीक कहला।
1: और एक चीज ई बा कि अपने खेती किसानी में लापरवाही बदे देखल जाए तो तनको गुंजाइश ना है, तनको
0: ना
1: जगह ना है।
0: ना ना।
1: आ जे गुंजाइश कैलस आ लापरवाही कैलस तो समझला कि ओकर खेती किसानी जोन है गुंजा चौपट हो जाए के है।
0: एकदम।
1: आ ये चीज के देखल जाए तो सब जानेला कि किसानी जीवन में कितनी समस्या है।
0: हाँ।
1: जोन किसान परिवार है वो तो देखते बा, ओकर बाल बच्चन से लेके पस परानी सब कुछ जानत बा, आसपास वाले भी जाने ना, काहे कि ओहू अगर खेती किसानी से जुड़ल हो तो उन्हों की यहाँ यह समस्या है।
0: हाँ।
1: आ सरकार भी देखा गुंजा जाने ले कि किसानी जीवन में कितनी समस्या आ सकत है,
0: हाँ।
1: लेकिन ओके उभारे का ओके बतावे का काम जो ना साहित्य के माध्यम से भी बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में हो चला लाल है। और आज जौने महान आदमी का जौन है जन्मदिन मनावल जात बा, वो खेती किसानी से जुड़ल ग्रामीण परिवेश से जुड़ल जितना भी पात्र रहल हुआ चरित्र रहल हुआ सबके अपने साहित्य में देखा स्थान दिले हुआ। आ वो मनई का नाम जनता हो।
0: एकदम जानते भाई। अपने किसान भैया लोगन के भी बतावल चाहत है कि आज है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन। मने कि एक ऐसन मनाई का जन्मदिन जो खेती किसानी से जुड़ल भेल रहले और संगे संगे ओमे जोन किसान भैया लोगन का संघर्ष हो, चाहे उनके दुख का कहानी हो, चाहे फिर उनके आगे बढ़ौले का कहानी हो, एक कुल के अपने कलम में बांध के रखलन।
1: बिल्कुल। आ देखा उनके कलम से समझला ऐसन ऐसन बात निकलल हो जौन गांव का पंचायत रहल हो
0: हाँ।
1: उम्मा का स्थिति रहल किसानन के साथ कैसन

0: व्यवहार पंचायत द्वारा हो आ दूसर रीति रिवाज का रहल ओ समय के लोगन के बीच में किसानी जीवन में किसानी परिवेश में जे लोग रहत बा ओ लोग का रीति रिवाज का है, उनके बीच का आपसी जोन भाईचारा रहल ओ कुल का स्थिति रहल आ समाज का जोन दबाव लोगन के बीच में रहल एक दूसरे के ऊपर रहल वो दबाव कभी जोन देखल जाए तो बहुत बढ़िया से बखान या कहल जाए कि चित्रण जोन है मुंशी प्रेमचंद अपने कथा कहानी उपन्यास में कैले हुआ।
1: भाई यही लिए तो इनके उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, साहित्य सम्राट कुल कहल जाला। आ इतने नहीं, देखा नंदू भैया, किसान भैया के लोगन का समस्या से लेके ये अपने जन पशु चौवा हुवन
0: हाँ
1: उनकर भी देखा, जो मनई से संबंध हो ओके भी इतना बढ़िया तरीके से लिखले हुवन, बतैले
0: हाँ
1: हुवन।
0: अरे देखा वो जोन कहानी रहल दो दो बैलन का कथा जोन रहल
1: हाँ
0: हाँ तो उम्मा हीरा मोती जोन रहल गुरु उनके माध्यम से जोन पशुअन का प्रेम अपने मलिकार के प्रति रहत हो ओकर भी बखान जोन है उनके साहित्य में मिलल कि अगर पशुन के प्रेम देबा तो उहो देखा उलट के तुहे प्रेम दिया भाई त ये भी है आपने भी खेती किसानी में अमन कहिला जा भैया कि अपन जोन पर्स हुआ उनके भी परानी समझा
1: एकदम एकदम।
0: हाँ जाड़ा का समय आवे तो ओनहु के वही तरह छाजन बाजन करा कि जैसे हमन अपने जोन जाड़ा में बढ़िया से रजाई ओढ़ के रही ल जाए तो कम से कम रजाई तो नहीं तो उनके छाप हूँ कैले रहा कि एकदम बढ़िया से आड़ रहे आ वो भी अपन बढ़िया से उम्मा जी सकें आ जी हाँ तो रही काम में ही हाँ
1: एकदम सही बात कहला है। अब भाई देखा, खाली खेतिये किसानी से काम ना चलेला। कोनो कोनो किसान भैया ऐसन भी होले जिनके पास भाई जमीन ना हो, ना खेती किसानी कर रहल हुए, लेकिन पशुपालन कई के अपन आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए अपने देश के मजबूत करत
0: अब
1: हुए।
0: देखा गोदाना में देखा कितना बढ़िया से जोन है कैसे भी एक ठे जोन होरी रहल ओकरे माध्यम से भी बात बताऊ ना कि भाई ओकर का लालसा रहल कि एक ठे गैया भी वो पाल सके हाँ ओहू का गोबर जोन उठावे फेंकै आ खेत में या कहीं भी जोन है डाने ले जाके एक तरह से देखा जाए तो गौ सेवा करे आ ओ गौ सेवा करी तो भाई दूध के रूप में अमृत भी मिली ओके
1: आ इनकर जीवन देखा हम लोगन के इहो सिखावेला, चाहे मौसम कौनो होए, अपने खेती किसानी से पीछे ना हटा के चाही। आ
0: नहीं
1: देखला हा ना उ कहानियां, जब पूस कर रात हो, एमे हल्कू नाम का जोन किसान रहे उ
0: हाँ
1: कड़ाके का ठंड में भी अपने खेत का रखवाली कर रहल रह।
0: देखा ओ गुंजा बहिन किसान का जीवन यह हो का कि हमहन का एक तरह से देखल जाए तो जोन जमीन है वो माता के समान आ माता का रखवाली करना आ उनके माध्यम से जोन चीज अपने उपज के रूप में मिलत हो ओकर रखवाली करना समझला कि ये बहुत बड़ा काम होत है काहे कि वही तो अपन आधार बा जीवन जिए के दो रोटी खाए बदे या और भी तरह के जोन काम काज है देखल जाए तो अगर व्यवसाय के रूप में भी अगर हमन खेती के ले थी जा तो आमदनी का बहुत बढ़िया स्रोत हमार खेती है आ ओकर रखवाली करना हमन सब जने का फर्ज बा आ ये हमन देखा गुंजा बहन करी ला जा कि खेती किसानी बदे हमन जागरूक होइला कैसे का चीज करे के है खेत में समय पे कब पानी देवे के है कब मेड़ बांधे के है आ कब जोन है अपन फसल तैयार होत हो तो ओकर रखवाली भी करे के है ये कुल का ध्यान देखा हमन देत रही ला जा आ एक चीज और ही कह गुंजा बहिन कि हमन जैसे अपने खेती किसानी का ध्यान दे थे जा अपने जीवन के अंतिम समय का भी ध्यान देवे क्योंकि कहें कि हर समय तो यह शरीर ना रही यह ताकत ना रही कि हमन खेती कर पावल जाए तो ऐसा कुछ चीज करल जाए कि जैसे अपन जोन है आगे का भविष्य जोन है बनल रहे चार पैसा जोन है हम मिलत रहे आ दूसरे के आगे हाथ न फैलावे के
1: एकदम
0: पड़े तो
1: एकदम।
0: ये चीज के भी करे के पड़ी हमन के।
1: भाई यही खातिर तो देखा सरकार के ओरी से भी एगो ऐसन पेंशन योजना का शुरुआत करल गयल हो, मने के
0: हाँ
1: शुरुआत तो हो गयल हो,
0: हाँ
1: लेकिन मने के जागरूकता का बात हो, मने के जाने समझे का बात हो कि उनमें कितना जल्दी से जल्दी उसे जुड़ सकल जाए।
0: देखा सरकारी नौकरी चाकरी में जे रहत बा ओके तरफ से तो सरकार जोन है व्यवस्था कैले रहल है कि नौकरी के बाद जैसे जब उ सेवा से अपने समाप्त निवृत्त हो जात हूँ तो उनके कुछ अंश मिलत रहत है जीवन निर्वाह बदे।
1: हाँ।
0: लेकिन जे लोग एकुल काम से ना जुड़ल हन, खेती किसानी करत हन, मजदूरी करत हूँ, ये तरह के लोग भी या और कोनो जो निजी क्षेत्र में काम में हूँ तो

0: उनके बदे भी जौन व्यवस्था हो सरकार कैले है, ये बड़ी अच्छी चीज बा, जागरूक होए के पड़ी हमहन के।
1: एकदम जागरूक होए के पड़ी। काहे से कि देखा अटल पेंशन योजना एक ऐसा योजना हो ना कि एमे 18 से लेके 40 वर्ष तक के आयु का जे भी भैया बहनी हुए से जुड़ सकेले। अब एमे देखा हर महीना चाहे तो 3 महीना चाहे तो 6 महीना पे कुछ न कुछ राशि जमा करे के होई, तभी जब 60 बरिस मने का पूरा हो जाए ना तो फिर धीरे धीरे करके उनके पेंशन मिली।
0: देखा उमा भी गुंजा बहन कहल बा कि बड़ा स्कीम बा, तो तरह तरह का उमा प्रीमियम देवे के होला, जैसे 1,000 से 5,000 के आसपास तक का जोन है पेंशन मिली महीना का, जब 60 साल के बाद हो जाई बीत जाई उम्र तब मिली, तो वो हिसाब से ओकर किस्त बांधल रहे ले 40-45 रुपया से लेकर के जोन है 250 रुपया तक का किस्त है महीना का, तो वो हिसाब से जे माँ आवत जाई अपन जमा करत रहे, आ वही हिसाब से जोन है अंत में उनके जब 60 साल का उम्र हो जाई तो वही मिली। आ समझला कि इहो जो 1,000 से लेके 5,000 के बीच में मिलत हो तो बड़ा सहारा हो जाई।
1: हाँ भाई
0: आ
1: सहारा तो है ही है।
0: हाँ आ मान ला जीवन ना हो तो जौन भी पैसा कौड़ी उम्मा जमा के लिए हो वो कुल जे के नामित करल जाला ओके मिल भी जाला, ये भी कुल व्यवस्था सरकार कैले हो। तो भाई देखा एक कदम बढ़ावे की हुई गुंजा, तो करे बदे भाई बैंक में जाके या डाकघर में जाके लोगन से समझें जिन भी कर्मचारी हुआ अधिकारी हुआ वहाँ का कि भाई कौने तरह से कितना लाभ हमन के मिल सकत है, वहाँ से बढ़िया से जानकारी लेके योजना का जोन है लाभ उठावें। आज जिंदगी में भाई देखा बुढ़ौती में अपने देखल जाए तो बहुत बड़ा सहारा ही हो जाता, तो एकर ध्यान देवे के हुई। आ हमहन तो भाई कुल संदेश के रूप में बतौता रही ला जा अपने पंच लोगन के, लेकिन अभी जोन पंचायती में यो संदेश है एहू के अपने पंच लोग के सुनवा देवल जाए।
1: सुनवा दो।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: चंदू भैया
1: हाँ
0: देखा ऐसा नेस होत रहल है, ऐसे जानकारी भी मिलल है। और देखा कहल जाएला ना कि अपने खेती किसानी में करे बदे बहुत कुछ हो, आ यही में अगर केहू भैया बहिनी का अनुभव मिलल करे ना तो फिर बात आगे और बढ़ेला। तो ऐसने में देखा आज अपने पंचायती में एगो भैया आयल हमें पारसनाथ मौर्य, जो
1: हाँ
0: अपन अनुभव बतैयन खेती में, इनसे बतियावत हूँ राजेश नारायण यादव भैया, तो इनकर सुन लेवल जाए पहले।
1: बिल्कुल लाभ लेवल जाए इनके अनुभव का।
2: आज हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में आप आयल हुआ पारसनाथ मौर्या जी, आप प्रगतिशील किसान हुआ ग्राम छाही पोस्ट सारनाथ ब्लॉक चिरई गांव जिला वाराणसी। तो हम इनसे आज किसान भैया लोग के खेती बाड़ी के बारे में कुछ अनुभव साझा आप करी हैं, उगरे विषय में हम आज जानल चाह। पारस मौर्या जी, आप ही बताओ, आप हमारे
1: जी
2: किसान भैया लोग के,
1: जी
2: आप कौन कौन खरीफ फसल का खेती कैले हूँ उगरे बारे में आप अनुभव साझा करें।
3: मक्का की फसल बोए हैं, इसको 15 जून को बोए हैं और मेड़ी विधि में इसको हम लगाए हैं। इसकी पहले जमीन को जुताई के समय डाई खाद दे करके हम इसकी मेड़ी बनाए हैं और उसमें उसमें बुआई किए हैं, क्योंकि मेड़ी विधि में ऐसा होता है कि गोड़ना कम पड़ता है, उसकी गुड़ाई कम पड़नी पड़ती है, पानी उसको मध्यम श्रेणी का पानी मिल जाता है और बरसात होने पर भी मेड़ी विधि से पानी अधिक बरसात होने पर निकल जाती है भैया। और घू और जीरा आने लगता है तब थोड़ा डाई और यूरिया खाद थोड़ा थोड़ा पेड़ पेड़ पेड़ के तर दे देते हैं।

0: और इस वक्त भैया हमारे मक्का की फसल में घुआ जीरा निकल रहा है और अगस्त में इसकी हम तुड़ाई कर लेते हैं भैया।
1: अच्छा ये आप बताओ हैं पारस भैया कि
0: जी भैया,
1: मक्का का आप कौन प्रजाति बोवल?
0: भैया मक्का की प्रजाति हरा मक्का ही मतलब हम लोग बेच देते हैं। सांचे मतलब अच्छे दाने पड़ जाते हैं और मक्के में मौसम के अनुसार इसके दाने कम आते हैं। तो मक्का हम बोए हैं भैया और बढ़िया मक्का है।
1: अच्छा एकर खेत की तैयारी करे के समय कौन कौन चीज का ध्यान आप देला या एकर कैसे आप
0: हाँ
1: खेत की
0: भैया,
1: तैयारी करला
0: पहले
1: या
0: खेत में मतलब गर्मी के दिन में मतलब इसको सड़ा हुआ कंपोस्ट खाद डाल करके जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद भैया जब लास्ट जुताई होती थी, थोड़ा डाई और पोटाश का प्रयोग करके उसमें मेड़ी बांध देते हैं। मेड़ी बांध कर उसमें बुआई करते हैं भैया।
1: अच्छा ये कितने दिन में एकर जमा हो जाला?
0: भैया ये 5-6 दिन में इसकी जमा हो जाते हैं।
1: अच्छा
0: पांच
1: अच्छा
0: छह दिन तक इसको नमी मतलब संतुलित रूप में होना चाहिए। अधिक नमी होगी तो भी नहीं जम पाएगा भैया, और नमी कम पड़ जाएगी तो भी नहीं जम पाएगा।
1: अच्छा तो मक्का के खेती में कोनो
0: अरे
1: रोग बियाद भी लगा ला भैया?
0: भैया, इसमें मतलब कि जब 15-20 दिन 25 दिन के होते हैं, इसमें कुर्रा टाइप के कीड़े लगते हैं। इसमें कोई कीटनाशक दवा छिड़काव कर देते हैं। जब उसमें हो जाते हैं तो उसके जो निकलने वाले गुआ होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, इसलिए इसकी एकाध दो छिड़काव करना आवश्यक होता
1: अच्छा
0: है।
1: कितने दिन में मक्का में बाल आ जाले?
0: भैया मक्का में 55 से 60 दिन में मतलब बाल आने लगती है।
1: अच्छा
0: जी,
1: अच्छा ये जब ये थोड़ा सा पकने के कगार पे
0: जब
1: होता
0: हाँ
1: है?
0: तक उसको तोड़ करके मार्केट में भैया हम डाल देते हैं।
1: अच्छा,
0: जी,
1: तो आपको बढ़िया मक्का से
0: बढ़िया
1: मुनाफा हो
0: मक्का
1: जाला?
0: से मक्का खेती बढ़िया हो, उसके खेत भी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना ताकत तो बहुत अधिक ताकत नहीं लेती है और छोड़ जाती है ताकत अगली फसल के लिए। इसमें जैसे गोभी और सब्जियां लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें ये नहीं होता है कि मतलब कि जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ गई है।
1: तो मक्का के बाल आप सुबह तोड़ाई करोगे कि शाम में?
0: भैया सुबह तोड़ करके मार्केट में लाते हैं तो अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि ताजा रहता है। मार्केट में ताजा बाल को अधिक पसंद करते हैं।
1: आप कौन नजदीकी बाजार है?
0: आप हमें पंचकोसी सट्टी जो है सारनाथ के आशापुर के बाद में है, उसी मार्केट में हम भैया इसको ले जाते हैं।
1: अच्छा तो आपके बढ़िया मुनाफा मिल जाला?
0: भैया बहुत अच्छा, और ये 70-75 दिन की खेती होती है। 70-75 दिन में अच्छा इसमें अब इसके खेत भी हमको मतलब सब्जी के लिए गोभी टमाटर बैगन इसके लिए तैयार खेत मिल जाता है।
1: अच्छा भैया मक्का की खेती आप पारस जी कैले हों,
0: जी भैया,
1: एकरे अलावा भी खरीफ में आप कोनो फसल
0: भैया
1: लगोले
0: खरे
1: हों?
0: भिंडी भी लगाए हैं भैया।
1: अच्छा
0: भिंडी भी वही मेड़ी सिस्टम से लगाए हैं,
1: भिंडी की खेती आप करते हैं तो इसकी तैयारी कैसे खेती करते हैं आप?
0: वही भैया पहले मतलब खेत में कंपोस्ट खाद अनिवार्य होता है, क्योंकि कंपोस्ट खाद न देने पर से केवल विलायती खाद देने पर भैया उसके अच्छे फल ही नहीं आते हैं और उसकी लाइफ जो है खराब हो जाती है। इसलिए कंपोस्ट खाद पहले डाला जाता है, उसके बाद अंतिम जुताई में कुछ मात्रा में डाई पोटाश डाल करके मेड़ी बनाते हैं, उस पर गोद देते हैं। इसकी दो एक बार निराई गुड़ाई करते हैं, और इसमें कुछ कीट लगते हैं इसके लिए कुछ अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं भैया।
1: भिंडी कौन कौन प्रजाति आप बोल?
0: भिंडी की पानधारी भिंडी भैया यहाँ पर सूट करते अधिक रहते हैं, सात धारी भिंडी में यहाँ पर कम सूट करती है भैया।
1: अच्छा, इसमें कौनो रोग भी आप?
0: इसमें मतलब कीड़े लगते हैं जो मुंडा हो जाते हैं, और इसमें महीन महीन कीड़े होते हैं जो कि उस पत्ती का रस चूसते हैं, उसके लिए हम दवा का प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा तो ये जैसे भिंडी आप लगाए देना तो कितना दिन में तैयार हो जाए, कितना दिन में निकले लगे ले?
0: भिंडी भैया 45 से 50 दिन के बाद फल आने लगते हैं। इसको हम अक्टूबर नवंबर तक इसको तोड़ते रहते हैं।
1: अच्छा तो आपके मुनाफा भिंडी की खेती से भी मिल
0: बहुत
1: जाला
0: अच्छा
1: भैया?
0: भैया, बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, और इसलिए हम भिंडी की खेती भी करते हैं।
1: अच्छा, तो अगल बगल किसान
0: अगल
1: प्रभावित
0: बगल किसान भी देखते हैं, आते हैं देखते हैं,
1: प्रभावित हो
0: जी
1: होला?
0: प्रभावित होते हैं।

0: जी भैया, एकरे अलावा और कौन
1: या
0: खेती?
1: कद्दू की भी खेती करते हैं।
0: अच्छा, इसकी तैयारी कैसे करते हैं?
1: कद्दू की खेती भैया वही मेड़ी से नाली सिस्टम में इसको मई जून में लगा देते हैं और उसको सिंचाई करते हैं। इसके लिए बहुत है देसी खाद भैया, कंपोस्ट की खाद इसके पेड़ पेड़ तक डालते हैं और थोड़ा बहुत डाई का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। कंपोस्ट खाद इसके लिए बहुत सूट करता है। हो सके तो भेड़ भेड़ बकरी की अगर लेड़ी दे दिया या भैया तो और अच्छा फल लिताते हैं
0: अच्छा, तो ये लौकी के फल कितना दिन में आ जाला?
1: भैया। ये 45 से 50 दिन में फल आने लगते हैं।
0: तो एक ही भी आप नजदीकी मार्केट जो
1: नजदीक
0: बाजार बा?
1: वही पंचकोसी सट्टी भैया, हम लोग के नजदीक के मार्केट पंचकोसी सट्टी है। ताजा सवेरे सुबह काटते हैं और मार्ट कर लेकर चले जाते
0: अच्छा, इनमें भी कोनो रोग भी लगा रहा
1: हैं।
0: भैया?
1: इसमें भैया वही कीट लाल वाला कीट लगते हैं, उसका दो एक बार चार बार दवा का छिड़का, कीटनाशी दवा का प्रयोग करते हैं।
0: एकरे अलावा और कौन खेती?
1: लौकी की खेती भी कद्दू कद्दू की खेती की तरह होती है, उसको भी उसी तरह से बोया जाता है, उसी तरह से भी तैयार कर लौकी और कद्दू दोनों तैयार करते हैं।
0: पारस भैया, जैसे आप खरीफ की खेती में धान के कौनो भी प्रजाति आप लगोले हो?
1: यहाँ भैया धान के हम 828
0: अच्छा,
1: धान के 828 प्रजाति की खेती करते हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई बढ़ता नहीं है, गिरता भी कम है। इसमें दरमनी भैया बहुत अच्छा जाता है, इसमें रोग कंडुआ रोग कम लगते हैं।
0: अच्छा, ये धान का नर्सरी आप डाले के समय कौन कौन बात का ध्यान देना?
1: भैया गर्मी में इसकी जुताई नर्सरी डालने के लिए, खेत की जुताई नर्सरी के लिए गर्मी की जुताई आवश्यक है भैया।
0: अच्छा,
1: अगर गर्मी की जुताई नहीं करेंगे तो इसमें पीलापन और हरदापन रोग आ जाते हैं, जिससे कि नर्सरी खराब हो जाती है। कंपोस्ट खाद डाल करके जुताई करके छोड़ देते हैं, फिर उसकी 15-20 दिन के बाद मई जून में हम इसकी नर्सरी 15 जून तक डाल देते हैं भैया।
0: अच्छा, जैसे आप हरी खाद उद का भी प्रयोग करा ना
1: हरी
0: धान
1: भैया हाँ
0: धान रोपे से पहले?
1: धनिया ढैंचा बोते हैं भैया, ढैंचा खेत में बो करके जब 3-4 सप्ताह हो जाता है उसकी जुताई कर पानी भर जुताई करके पानी भर देते हैं
0: कितना दिन पर ये ढैंचा तैयार हो जाला?
1: भैया। ढैंचा 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाता है।
0: अच्छा, तो ये थोड़ा भी नरम होला तब जुताई
1: हाँ
0: होगा?
1: बहुत कड़ा होने पर सड़न में तब अधिक दिन तक पानी भरना होता है, 4-5 सप्ताह तक कम पानी में ही सड़ जाते हैं।
0: अच्छा, एक बाद आप धान की रोपाई कराना?
1: उसके बाद धान की रोपाई जुताई करके धान की रोपाई कर देते हैं, बहुत अच्छी बहुत कम मतलब डाई पोटास करते हैं। अगर ढैंचा बो दे इसमें डाई पोटास बहुत कम मात्रा में देते हैं।
0: अच्छा, जैसे मान लीजिए धान के खेत में अगर घास फूस हो जाए तो अगर कैसे
1: उसके
0: ओकर रोकथाम करना?
1: खर पतवार अथवा दवा भी आ रही है, लेकिन जब गर्मी उर्मी की जुताई कर देते हैं हम लोग तो उसमें के जो है जुलाई महीने में जब बरसात होती है तो कुछ घास निकलते हैं, जुताई कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है तो उसके निकाल लेते हैं हाथ से घास।
0: अच्छा, तो ये धान जो आप लगाते हैं तो ये महीन धान है कि मोटा धान?
1: न तो बहुत महीन है न तो मोटा है, मध्यम श्रेणी
0: अच्छा,
1: के चावल चावल इसके अच्छे खाने में अच्छे होते
0: खाए में कर अच्छा स्वाद आवाज।
1: स्वाद अच्छे होते हैं।
0: पारस भैया, हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में आप अलना,
1: हाँ भैया
0: इतना बहुमूल्य समय दहला, तो एक बदे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया।
2: हाँ गुंजा, देखा हो ई जोन बतकही रहल है ना पारसनाथ मौर्य से राजेश नारायण का, तो एम्मा आपन पारस भैया जोन भी अनुभव रहल है खेत के जोताई से लेके आप फसल के बोआई से ओकर उत्पादन अंतिम अथ्थु करे तक पूरा जानकारी दे दे ना कि कौने कौने तरीके से ओकर ख्याल रखे ना, आ कितना जोन है रासायनिक खाद कैसे जैविक खाद या हरी खाद का जोन इस्तेमाल बताऊ ना, ये कुल चीज बताऊ ना, आ समझला कि कहीं ना कहीं ये विशेषज्ञ लोग का भी प्रभाव इनके ऊपर बा कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से जोन है खेती करत हुआ। तो ये बतकही हो गल, आ अब जोन है ना अपने पंचायती में हो जाए मन मनसायन, आ एकरे बदे विदुषी सुचरिता गुप्ता हई, तो इनकर ई कजरी जोन है अपने पंच लोग के सुनवावल जाए।
1: सुनवाता है।

0: तो अभी भैया लोगन सुनत रहले हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता के कजरी सुनत रहलन हैं आनंदू भैया।
1: हाँ
0: देखा हो कजरी तो सुन लेवल गए।

0: जोन अगले दिन
1: अब
0: कार्यक्रम हो ओकरे
1: हाँ
0: बारे में भी
1: हाँ
0: बता दिया
1: अब
0: जाए।
1: ओके पंच लोगन के बता दें कि देखा खेती के बाद ई होई गुंजा बिहाने 6:05 पे आ एम्मा पंच लोग सुनिह परौरा के खेती के बारे में कि कैसे कैल जात है का ध्यान रखे आ ए विषय पे जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह।
0: सांझी के 6:30 पे होई किसान वाणी कार्यक्रम, जेमे
1: अच्छा
0: बतकही होई कि खरीफ में हरे चारी का खेती कैसे किहल जाए। ए पे डॉक्टर निखिल कुमार सिंह से बती हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया।
1: गुंजा देखाई बहुत ही समझला कि मार्के का फसल हो कि अपने गोरु चौवन बदे हरियर चारा जोन है ओके कवने तरीके से उगावल जाए तो जोन पशुपालक भाई उगावल चाहत हूँ वो ध्यान दे आ जोन किसान भाई भी अगर गोरु चुगा रखले हुआ तो वो भी हरे चारे के खेती बदे ए जोन है मत कही के सुने ध्यान से सुने तो देखा हो बोलत बतियाओ कुल काम तो हो गल बत कही हो गल अब चले का बेला आएगा तो चलत है जा पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रांझणा से। आवाजें हैं जावेद अली, कीर्ति और पूजा की। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म जब वी मेट से। आवाज है मोहित चौहान की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का। फिल्म जब वी मेट।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।
5: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी। मोहब्बत है ये जी, हुजूरी नहीं,
1: मोहब्बत है ये। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
4: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
2: इसके अलावा मंत्रिमंडल

0: मंडल ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
1: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है।

0: निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
1: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए वो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
2: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल भगवान बुद्ध की तपोस्थली सिद्धार्थनगर में विपश्यना केंद्र और कपिल वस्तु स्थित बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन माह के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐसे में सभी प्रकार के वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
3: कांवर यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उसपे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंदा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत और बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग।
2: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
3: सुन जा ठंडी हवा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म भाग मिल्खा भाग से। आवाजें हैं जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म ब्रह्मास्त्र से। आवाजें हैं तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

रसरंग कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अतरंगी रे से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शशा तिरुपति की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का।

आवाज है अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा और संगीत है श्रेयस पुरणिका, फिल्म एनिमल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म डर्टी पिक्चर से। आवाज है कमल खान की, गीतकार हैं रजत अरोड़ा और संगीत है विशाल शेखर का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक

चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है PTI भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्ल

मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जन भागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए।
भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता

0: सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।
2: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
3: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी
1: हवा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी और इस कार्यक्रम का पहला गीत है धड़कन फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दिल से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की।

0: रसमाधुरी कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कयामत से।
1: वैसे
0: आवाजें
1: मुझे
0: हैं
1: अमीरों से मिलने का कोई
0: कुमार
1: खास शौक
0: सानू
1: नहीं है,
0: और
1: तो फिर मैं क्या
0: अलका
1: करूं भैया?
0: याग्निक की।
1: एक
0: गीतकार
1: बात
0: हैं
1: है,
0: समीर
1: मुझे
0: और
1: तुम्हारे
0: संगीत
1: बिना
0: है
1: मर भुगतना बहुत
0: नदीम
1: पसंद है,
0: श्रवण
1: तो
0: का।
1: मुझ

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का
1: सारे
0: कार्यक्रम
1: जहां का
0: रसमाधुरी,
1: दर्द
0: और इस
1: समेट गया,
0: कार्यक्रम का आखिरी
1: जब
0: गीत
1: कुदरत
0: है
1: से
0: फिल्म
1: कृष्णा बन सका
0: राज से।
1: तो उसने तुम्हारी ये तो आंखें बंद कर
0: आवाजें
1: दी।
0: हैं अभिजीत
1: बहुत दर्द है,
0: भट्टाचार्य, अलका
1: क्या कोशिश
0: याग्निक
1: है तुम्हारी इन
0: की,
1: आंखों में, दिल की फांसी
0: गीतकार
1: पे
0: हैं समीर और
1: एहसास
0: संगीत
1: से
0: है
1: तुम
0: नदीम
1: लिखते हो।
0: श्रवण का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 4,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
2: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
2: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीज की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन

0: करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतरदेशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
0: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के

0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी, तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain.
2: Exploration ke liye aur uske baad mein production ke liye बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू गेट द एक्चुअल डेटा वेदर देयर इज ऑयल और गैस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट।
1: The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Prime Minister Narendra Modi has said that the Cabinet's approval of Samudra Manthan marks a transformative leap towards strengthening India's energy security and unlocking the vast offshore potential.

0: New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary, Jadumani Singh and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरांदोजी के निजाम में भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिससे मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम हासिल होगा और समुद्र के किनारे के वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल किया जा सकेगा। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में पुनः अमन मुजाहिरीन के खिलाफ बहीमाना कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, राहत और बचाव की कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी हैं। दौलत मुश्तरका खेलों में स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता। भारत के मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लिमोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पांघल अपने अपने मुतालिका मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना पीएमएसएसवाई की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरांदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को 5,070 करोड़ रुपए की कुल मालियत के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये स्कीम 5,000 मेगावाट पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर का अहाता करती है, जिसके साथ तवानाई की जखीरांदोजी के ऐसे निजाम भी तामीर किए जाएंगे जिनकी 2 घंटे की कम अज कम जखीरांदोजी की सलाहियत कुल 10,000 मेगावाट पर आवर होगी।
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: मरकजी काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर माली बरस 2030-31 तक अमलावरी होगी। जनाब वैष्णव ने बताया कि स्कीम समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की पूरी वैल्यू चेन में मदाखलतों के एक जामे सेट का अहाता करती है।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीज का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम।
1: मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि 5 साल की मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के मजमुई माली अखराजात की मंजूरी दी गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि मंजूरी हुकूमत के इस अज़्म की तौसीख करती है कि किसानों की खुशहाली कौमी खुशहाली की बुनियादें इस्तवार करती है।

0: मरकजी काबीना ने खेलो इंडिया स्कीम को वसत अता करने की भी मंजूरी दी है। साथ ही उसने खेलों की कौमी फेडरेशनों के लिए तावुन में भी इजाफा किया है, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक की मुद्दत के लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन की काबीना की जानिब से मंजूरी भारत के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने की जानिब काया पलट कर देने वाली एक जस्त की अलामत है और इससे समुद्र के किनारों की वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि सरमायाकारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महारत से भरपूर इंसानी असासे और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानेब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2030-31 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तिसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसत और खेलों के कौमी फेडरेशन के लिए तावुन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण वीबीजी रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर ममलिकत कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमल आवरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान ये बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फे सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवात की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने

0: और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजिमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहीमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार दिया था, जिन पर फसादात के दौरान एक हुजूम ने हमला किया था। बाद में उनकी लाश एक नाले में पाई गई थी। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के जीर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद इंतखाबात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तौहीन आमेज अवामी रद्द अमल का इजहार करते हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन शहरियों के खिलाफ जारहाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में 40 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है क्योंकि बालाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से महानदी और उसकी मावन नदियों में तुगयानी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा के 15 जिले मुतासिर हैं, जहां गांवों, सड़कों और हजारों हेक्टेयर काश्त की जमीनों के सैलाबी पानी में डूब जाने से रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। हीराकुंड बांध के 22 दरवाजे खोल दिए गए हैं जिनसे सैलाब के पानी का इखराज हो रहा है। हीराकुंड बांध में पानी की सतह 625 फीट से ज्यादा हो गई है। बांध में कसीर मकदार में पानी की आमद लगातार जारी है जिससे मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इन हालात में महानदी के तास में शदीद सैलाब के खदशात बढ़ गए हैं। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कोइंझार जिलों का फिजाई दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। भद्रक में एहतियाती कदम के तौर पर सभी स्कूल बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: गुजरात में रेड अलर्ट के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे जनूबी और वस्ती खित्तों में रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ा है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि बारिश से मुतासिर जिलों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा और सूरत समेत रियासत के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में भारत की स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता है। खेल में भारत ने पहली बार सोने का तमगा जीता है। स्मिता ने कनाडा की क्वेंच को खातिन के 48 किलोग्राम जुमरे में 2-1 से हराया। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पांघल अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गए हैं जिससे भारत के लिए कम से कम चांदी के 2 तमगे यकीनी हो गए हैं। वहीं अंकुश पांघल ने आज हुए सेमीफाइनल मैच में कनाडा के जोशुआ ओफरी को 5-0 से शिकस्त दी। इस तरह पांघल मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत ने दौलत मुश्तरक खेलों में अब तक 18 तमगे जीते हैं जिनमें सोने के 4, चांदी के 9 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दी है जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हो रहे हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन। नसीब वालों को ही किसी का ऐसा साथ मिलता है जिसकी मौजूदगी में हर लम्हा खास मिलता है।

हुस्न जब अपनी तमाम रौनक के साथ उतरता है, हुस्न जब अपनी तमाम रौनक के साथ उतरता है, चांद भी उसकी चमक के आगे फीका सा लगता है।

इश्क की दास्तां छुपा है कहां छुपती है दोस्तों, इश्क की दास्तां छुपा है कहां छुपती है दोस्तों, पत्ता पत्ता शाख शाख उसका पता बता ही देती है।

सफर की थकान भी मुस्कुरा उठती है। राहों में जब कोई हम सफर बनकर दिल के साथ चलता है।

दिल अक्सर उन लम्हों की तलाश में भटकता है जो गुजर तो जाते हैं मगर उम्र भर महकते रहते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो।

0: हर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म बॉर्डर से। आवाजें हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है अनु मलिक का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दिल का रिश्ता से। आवाजें हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म दिल का रिश्ता।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और बाबल मेहता की, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म दिल है कि मानता नहीं।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म दिल से। आवाजें हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है ए आर रहमान का। फिल्म दिल से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती, राग है यमन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सितार वादन। कलाकार थी विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती। राग था यमन। तबले पर संगत कर रहे थे श्री राम कुमार मिश्रा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर

0: वर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
0: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से